وضرب

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

0: तो तुम परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: ऐ
0: दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्ज़।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे? इनमें दो चश्मे उबल रहे हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

101 FM.

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM मधुबन रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back. Hit music. On your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

0: आड़ से लड़ते रहे, हर बार और हम बढ़ते रहे।
1: आसमां को छूते जाएं हम जश्न आजादी पे, यही है अज़्म।
2: Telenor, the smart call. 101 FM.

0: 101 FM
1: Gook Studio, Season 14.

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM मनोरम रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back, hit music on your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.
2: I love FM.

Alright, in the name of Allah, the merciful and the most beneficent, Assalamu alaikum, and of course, Assalamu alaikum, Ali Pakistan. Janab se mukhatib aapka host, aapka dost, DJ Sahil signing in. Aye, Janab, kaise aap tamam log? Yakeenan theek thaak hain, wane fit hain, mazay mein hain, khoob enjoy kare apni zindagi ko. It's 8:03 on the dial. 8:03 ho chuke hain aur aaj hai jumme ka din, yani ki Friday, 3rd of July 2026. तो किस किस का बर्थडे है आज? Many many happy returns of the day. हमारी बहुत सारी दुआएं नेक तमन्नाएं आप तमाम लोगों के लिए जिनका भी आज जन्मदिन है जी, जिस सालगिरह मनाने जा रहे हैं. So, जनाब क्या चल रहा है जिंदगी में? कैसी गुजर रही है जिंदगानी? लाइफ में क्या चेंजेस आ गए हैं? उम्मीद करते हैं जो भी हो बहुत ही अच्छा और बेहतर हो, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस हो.

जो लोग अभी भी उठे कहेंगे उन्हें गुड मॉर्निंग एवरीवन, और वो लोग जो कि नाश्ता कर रहे हैं यानी कि ब्रेकफास्ट टेबल पे मौजूद हैं, उन्हें कहेंगे जनाब के अच्छा खाएं और हेल्दी खाएं। एक अंडा रोज का खाना चाहिए बच्चे बड़े सबको। बच्चे तो वैसे स्कूल में अंडे खाते ही हैं, टीचर्स उन्हें अंडा ही देते रहते हैं अक्सर उनके टेस्ट के ऊपर, लेकिन हेल्दी फूड के तौर पर आपको जो है वो एग्स का इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली वो लोग जो कि जिम जाते हैं और थोड़ा सा वजन रिड्यूस करना चाह रहे हैं, अपना वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, वो यकीन है ना एग व्हाइट्स खा सकते हैं, और जिन्होंने गेन करना है वो पूरा अंडा खाएं जी, कोई मसला नहीं है।

0: सुबह की पहली आवाज को प्रोग्राम में जगह देने जा रहा हूँ और होपफुली ये गाना आपको बहुत अच्छा लगेगा। पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये गाना ना सुबह के लिए बना हुआ है, मॉर्निंग के लिए बना हुआ है। मेरे जहन में हमेशा यही आता है तो मैं इसको अक्सर प्ले कर देता होता हूँ।
1: Ladies and gentlemen,
0: Fakhr Mahmood,
1: te quiero mucho yo a ti.
0: Good morning.

राइट, वो दिल रुबा आप सुन रहे थे फाखर की आवाज को। 8:09 यानी कि 8:09 हो चुके हैं और डेफिनेटली ये वक्त है कि आप लोग तैयार हो रहे हैं, आपने अपने ऑफिसेस की जानिब जाना है, अपने काम पर जाना है, मजदूरी करने जाना है जी। तो डेफिनेटली आप लोगों ने जो है वो अपने अलार्म जो है वो उसके अकॉर्डिंगली लगाए होते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो सुबह थोड़ा आराम से जाते हैं और लेट ही जाते हैं और लेट लतीफ कहलाते हैं। यू नो व्हाट, के लेट होना बहुत गलत है लाइफ में। जितने मर्जी बेहतरीन इंसान है, कामयाब इंसान है, अगर आप टाइम पे नहीं उठते हैं, टाइम पे अपने सारे काम नहीं करते, तो वो जिंदगी में आपका एक सबसे ऐसा सिलसिला है जो कि नाकाम करेगा आपको। तो पंक्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर चीज को वक्त पे करना सीखें। स्पेशली आप सुबह मॉर्निंग पर्सन बन जाएं, मैं तो आपको ये कहूंगा कि मॉर्निंग पर्सन बने, सुबह उठे, नमाज पढ़े, उसके बाद अपने कामों को लगें। बहुत सारे लोग जो हैं वो नमाज के बाद सो जाते हैं, जो कि आई डोंट थिंक सो कि आपकी मतलब लाइफ में कोई जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। कोशिश ये करनी चाहिए कि नमाज के बाद जो है वो आप उठें, आप अच्छी सी वॉक पे चले जाएं, थोड़ा सा अपना टाइम मी टाइम होना चाहिए आपका, जाके अपना जो है वो वॉक करें, एक्सरसाइज करें, आपको जिम ज्वाइन कर लें सुबह मॉर्निंग में, अपने आप को जो है वो एक अच्छी सेहत के लिए, एक अच्छी जो तंदुरुस्ती वाली सेहत होती है वो दें। फिटनेस का ख्याल रखना बहुत जरूरी है लाइफ में, और स्पेशली इन दिनों तो अपनी वाटर इनटेक का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। बारल जी आपको लेके चलेंगे F101 चैनल पाकिस्तान के पेज पर। और क्या हो गया ये जी, पोस्ट हमारी मौजूद है, और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने सुबह सवेरे जो है वो मुझे लाइक किया, अगर अच्छा लगा मुझे, थैंक यू। और भी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पोस्ट को लाइक जरूर किया कीजिए। एक आर्टिस्ट जो है ना, एक आर्टिस्ट पर्सन जो होता है ना, कभी जिंदगी में लोग समझ ही नहीं सकते इस चीज को, वो अप्रिसिएशन का बहुत भूखा होता है, वो शदीद नदीदा होता है। आपको पता है एक आर्टिस्ट ऐसा होता है, आप उसको प्यार से बात करेंगे, उसकी उसके लिए अच्छा बोलेंगे ना, तो वो बहुत खुश होगा, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है आपके लिए, काम कर रहा है आपके लिए। मैंने नॉर्मली देखें, आप किसी के लिए भी आप कुछ भी बोलें, कोई इतना खास फर्क लोगों को नहीं पड़ता, अगर बोले भी ना भी बोलें, लेकिन एक आर्टिस्ट जो है ना वो हमेशा अपने काम को अप्रिशिएट होते देखना चाहता है, क्योंकि वो मेहनत करता है। और राइट जी, हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर अजीज, यानी कि राहत बानो मुअज्जमर कहती हैं। सुहेल यूसुफ को सलाम, आपका सलाम सुहेल यूसुफ तक पहुंच चुका है, और कहती है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक, राहत बानो फ्रॉम रावलपिंडी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नेक्स्ट वी हैव शाहिद खान, कहते हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग। इसके अलावा हमारे साथ जी अकबर खान, कहते तमाम खूबसूरत समातों को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर पाकिस्तान फ्रॉम कराची, थैंक यू सो मच ऑल द वे फ्रॉम कराची। अकबर हमारे बहुत अच्छे लिस्टनर हैं, कोई सुने ना सुने अकबर तो सुन रहा है। और कहते हैं नंबर वन शो, थैंक यू। नजीर खोसो हमारे साथ है सोबतपुर बलोचिस्तान से, कहते हैं ताकत हमेशा हक नहीं होती, और हक हमेशा ताकतवर नजर नहीं आता है, लेकिन सच्चा किरदार आखिरकार लोगों की दिल जीत लेता है। चलो आज से हम अपने किरदार को मजबूत बनाने का अहद करते हैं, बहुत खूबसूरत बात है। मोहम्मद हफीजुर रहमान भक्कर हमारे साथ है, कहते हैं ईदगाह जनूबी भक्कर से, मोहम्मद हफीजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक, अली रहमान मुल्तान से, गुल यासीन नाज, और कहते हैं वेलकम टू द शो, थैंक यू। All right, next we have Waseem, Malik Waseem Awan, Munda Sialkoti. Mohatram Janab RJ, Assalamu Alaikum, Walaikum Assalam. और बहुत सारे मैसेजेस उन्होंने लिखे हैं, जो कि आराम से पढ़कर फिर जो है उन्हें प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। So, नेक्स्ट ट्रिक में आपके लिए क्या प्ले करने वाला हूं, नेक्स्ट ट्रिक में आपके लिए वो प्ले करने वाला हूं जो थोड़ा सा आपको बूस्ट अप करेगा। अगर आप थोड़े से डाउन डाउन हैं, तो डेफिनेटली आप पता क्या होंगे, आप ऐसे ना थोड़ा सा डांस करना शुरू हो जाएंगे, ये ऐसे, वाओ, कम ऑन, यू गेटिंग लेट मैन, कम ऑन। लगता है आपके ऑफिस में कोई दयानी साहब नहीं है।

0: Big idea? Check. Passion? Check. The cloud resources to scale? That's where many startups struggle, but not anymore. Ignite under the Ministry of IT and Telecom brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
1: This is FM 101.
2: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। एआई, सास,
3: फिनटेक,
2: हेल्थटेक, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर वन के लिए $6,000 और टियर टू के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
4: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
5: सुनते रहिए FM 101।
6: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
2: सुनते रहिए FM 101।
3: This is the sound of your cloud bill. And this is the sound of it getting reimbursed. Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers, up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2, plus one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
4: This is FM 101.
5: Suror Sangeet. साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
6: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक, वन अबव FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

tebe. This is FM 101.

0: This is FM 101.
1: Big idea? Check. Passion? Check. The cloud resources to scale? That's where many startups struggle, but not anymore. Ignite, under the Ministry of IT and Telecom, brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
2: सुनते रहिए FM 101.
3: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। एआई, SaaS,
4: FinTech,
3: HealthTech, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
5: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: I'm on the way, बस आधा घंटा दे।
2: चल बेटा जल्दी कर।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट, और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
2: This is the sound of your cloud bill. And this is the sound of it getting reimbursed. Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across 2 tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
3: This is FM 101.

0: saving roll.
1: Thank you.

0: 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम आज से ईरान और तुर्की का सरकारी दौरा करेंगे। नायब वजीर आजम और सऊदी वजीर खारजा ने टेलीफोन पर गुफ्तगू में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। कानून इंसाफ के वजीर ने कहा है कि मुल्क भर में जेलों के निजाम में जामे असलाहत मुतारिफ कराई जा रही हैं। और खवातीन आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाए।

0: जाएगा।
1: This is FM 101.1।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.1.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: Suror Sangeet, Sazo Awaaz, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: Big idea? Check. Passion? Check. The cloud resources to scale? That's where many startups struggle, but not anymore. Ignite under the Ministry of IT and Telecom brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 USD in cloud reimbursement across two tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
1: This is FM 101.
2: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। एआई, सास,
3: फिनटेक,
2: हेल्थटेक, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
4: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
2: सुनते रहिए FM 101।
3: दिस इज
4: FM 101। दिस इज द साउंड ऑफ योर क्लाउड बिल एंड दिस इज द साउंड ऑफ इट गेटिंग रीइंबर्स्ड। Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
2: Shukriya. आपने FM 101 ट्यून किया। सुनते रहिए FM 101।

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

sunaya tebe. सरोर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: de sonra tebe.
1: This is FM 101.

0: पोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
2: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
3: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल एफएम 101

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए, मोमिन की दुआ सूफी की सदा।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ.
1: This is FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम एक रोजा सरकारी दौरे पर ईरान रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने वबाई अमराज के फैलाव की रोकथाम के लिए मुल्क भर में गैर मयारी सरिंजों के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की हिदायत की है। वजीर दाखिला ने सऊदी अरब के साथ बिरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। ऑनलाइन हज रजिस्ट्रेशन निज़ाम को मुल्क भर में जबरदस्त पजीराई हासिल हो रही है। पाकिस्तान ने किसी भी कशीदगी से बचने के लिए ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलत जारी रखने के अज़्म का इआदा किया है। ख्वातीन के T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल इतवार को लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: This is FM 101.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
0: This is FM 101.

0: outspend. Apply now at ignite.org.pk.
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया.
2: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज. यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं. इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स. टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं. आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर. एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है.
3: Smile and dial 111-111 FM.
2: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है. पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स. AI, SaaS,
4: FinTech,
2: HealthTech, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है. टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट. प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026. रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर.
5: Tune in to One Above, FM 101.

देखिए नया ड्रामा सीरियल जहन्नुम बारास्ता जन्नत बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।

Spaß. Gut.

सुनते रहिए FM 101 101 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तेहरान पहुंचे हैं, जहां वो ईरान के रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई के जनाजे की तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर दाखिला ने सऊदी अरब के साथ बिरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। आज बलोचिस्तान के जिला शिरानी के इलाके दानासर में मुसाफिर बस खाई में गिरने से 40 अफराद जहां बहक हो गए। आज डेलास में फीफा फुटबॉल आलमी कप टूर्नामेंट के नॉकआउट मरहले में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Sur aur Sangeet, Saazo Awaaz, aapka manpasand radio channel, FM 101.
4: Bigaria, check. Passion, check. The cloud resources to scale, that's where many startups struggle, but not anymore. Ignite under the Ministry of IT and Telecom brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 in cloud reimbursement across 2 tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
5: सुनते रहिए FM 101।
6: अजी सुने जरा फसाना प्यार का,

0: देखिए ड्रामा सीरीज फसाना मार्ट का जुम्मा से इतवार रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
2: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
3: सुनते रहिए FM 101 101 101।

के हैं, इनको हुआ क्या कि इन्होंने मेरा दिल लेके मेरे हाथ से खोया। बस इसी ध्यान में हम थे कि हुई पांव की आहट, नजर उठी तो ये देखा कि चला आता है जहरा जबी माँ है मुबी तुरफा हसी पर्दा नशी तुर्रसमी लुक बतेची दिल का मकी दुश्मन थी साथ मगर कोई नहीं। धक से हुआ दिल के ये इस वक्त कहा, उससे जो पूछा के बता खैर तो है क्यों इधर आया, तो जवाब उसने दिया हंस के यूं ही, तुझे क्या काम जो तू पूछ रहा है, कोई काजी है क्या मुफ्ती।

पे सटा कासा। अरे तो वाह, अरे तो वाह, चलो बैठे रहो, बातें न बनाओ। तुम यूं ही मुंह से ये कहते थे तुम्हें हमसे मोहब्बत है। हटो जाओ मोहब्बत का भला नाम डुबोया, हटो जाओ मोहब्बत का भला नाम डुबोया, हटो जाओ मोहब्बत का भला नाम डुबोया।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स AI, SaaS,
2: FinTech,
1: HealthTech। इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। AI, SaaS,
2: फिनटेक,
1: हेल्थटेक, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
3: सुर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर. द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान. ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101.

ऐसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो। लिखूं तेरी सदाएं पढ़ लूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: खवातीनों हजरात, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कलाकार किसी को खो के लिखते हैं और जो गा नहीं सकते वो सुन के रो लेते हैं। तो आप सबकी खिदमत में पेश है किसी की गुजारिश, किसी की इल्तिजा, किसी की शिकायत। जरा तवज्जो फरमाएं।

0: मिल जाऊं मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूं, यह है कमाल मेरा।
1: सुर और संगीत साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी। सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून। दुनिया झूठी, दुनिया वाले है फेक, उनके बारे में मेरा है टेक। I don't care what you think, what

मिटक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अब्दुल कदीर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम तुर्की के सरकारी दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने ईरान के मरहूम रहबर आला आयतुल्ला अली खामेनेई की नमाज जनाजा में शिरकत की है। कौमी तहफ़ खुराक के वजीर ने पुर्तगाल के सरमायाकारों को पाकिस्तान के जैतून के शोबे में मुश्तरक मनसूबों और सरकारी और निजी शराकत दारी के मौके तलाश करने की दावत दी है। और पाकिस्तान ने यकीन जाहिर किया है कि आइंदा दिनों में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में मजीद नतीजा खेज पेशरफ्त होगी।

0: Welcome to Islamabad.
1: आपने FM 101 ट्यून किया।
2: सुनते रहिए FM 101. सुनते रहिए FM 101.

चल बोलिए उत्थे चलिए जिथे होवन सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पहचाने ना कोई सानू मन्ने। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 के लाहौर स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फरहान खान। एफएम 101 इंटरनेशनल की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में आप सब सुनने वालों को, सभी से आने वालों को, पाकिस्तान भर में इस आवाज़ को जहां जहां सुना जा रहा है, जहां जहां तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, सभी सुनने वालों को दिल की गहराइयों से, मन की सच्चाइयों से खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, एंड हैव अ ब्यूटीफुल नाइट टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी सुनने वाले, हमारे ना सुनने वाले भी खैरियत से होंगे। अगर इस सफ़र में आप हमारे हम सफ़र हैं हमेशा की तरह, हम आपको बताते चलें जनाब, दिल वालों की बज़्म सच चुकी है। इस बज़्म में आप हमारे साथ होते हैं, हम आपके साथ होते हैं, अपने दिल की बातें लेके हम हाज़िर होते हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिनों के बाद आज मेरा आपके साथ इंटरेक्शन होने जा रहा हूँ 101 इंटरनेशनल पे। सो पाकिस्तान भर में जहाँ भी हैं आप लोग, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आपके लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाएँ, आप सबके लिए बहुत खैर और आफियत वाले मामलात करें। सो ढेरों दुआएं आप सब के लिए, सभी सुनने वालों के लिए। अपनी गाड़ी में बैठे हमें सुन रहे हैं तो आपको कहेंगे प्लीज़ ड्राइव केयरफुली, अगर अपने घरों में बैठे हमें सुन रहे हैं तो हम कहेंगे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ दिल के कानों से सुनिएगा। सो जनाब, दिल वालों की बज़्म सज चुकी है और इस बज़्म में आप हमारे साथ होते हैं, और हमेशा की तरह ये जो बज़्म है जिसको हम दिल वालों की बज़्म कहते हैं, महज एक महफिल नहीं बल्कि एक एहसास है। एक ऐसी दुनिया जहाँ जज्बात की कदर होती है, जहाँ मोहब्बत अपनी पूरी शिद्दत के साथ सांस लेती है, जहाँ अल्फाज दिलों की ज़ुबान बोलते हैं, और ये वो जगह है जहाँ एहसास ज़ख्मों पर मरहम बनते हैं, जहाँ हिजर की तड़प को समझा जाता है और वसल की खुशबू महकती है। और ये बज़्म उन लोगों के लिए है जो दिल की सच्चाई पर यकीन रखते हैं, जो धड़कनों की ज़ुबान समझते हैं, जो वफा को एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक इबादत समझते हैं। सो जनाब, यहाँ ना झूठ की गुंजाइश होती है ना धोखे का गुज़र, यहाँ आंखों में सच बोलने का हुनर होता है और लबों पर बातें जो सीधा दिल में उतर जाती हैं। सो जनाब, आप भी इस बज़्म का हिस्सा बन सकते हैं, यानी कि दिल वालों की बज़्म में आप भी शामिल हो सकते हैं। 04221100101 हमारे रابطे का नंबर है, 04221100101 हमारे रابطे का नंबर है। और इसके साथ साथ एफएम 101 लाहौर के ऑफिशियल पेज पे आप हमारा साथ निभा सकते हैं। साथ निभाने के लिए, हाय कितनी प्यारी बात है ना, साथ निभाने के लिए साथ निभाना चाहिए, है ना। साथ निभाने के लिए जो है ना, हम सफ़र के साथ पूरे दिल के साथ साथ निभाना चाहिए। जिसके साथ आप चलें ना, उसके साथ दिल से चलें। जिसके साथ आपने चलना ना, पूरे मोहब्बत से, पूरी मोहब्बत की शिद्दत के साथ चलें। इसमें वो कहते हैं डंडी नहीं मारनी, जब किसी का साथ निभाना है ना तो फिर साथ निभाना है, फिर उसको साथ ले के चलना है। इस सफ़र में ना, जो आप साथ निभाने का सफ़र होता है ना, बात कहाँ से कहाँ चली गई, जो साथ निभाने का सफ़र होता है ना, आप यकीन जाने इसमें बहुत कुछ होता है। इसमें मोहब्बत होती है, इसमें लड़ाई होती है, इसमें झगड़ा होता है, इसमें नाराज़ी होती है, इसमें दूरी होती है, इसमें एक दूसरे से बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा दूरी भी हो जाती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूरी जब बहुत ज़्यादा होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसको ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए साथ निभाने के लिए बहुत कुछ पीना पड़ता है, बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बड़ा कुछ, बड़ा दिल करना पड़ता है, वो कहते हैं बड़ा जिगरा करना पड़ता है, बड़ी सोच करनी पड़ती है, और बहुत चीज़ों को पी जाना पड़ता है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है? गुस्सा। अपने गुस्से को पीना होगा, अपने आप को मारना होगा। बहुत से मकामात पे, बहुत से मौक़ों पे ऐसा होता है, इंसान अपनी अना के भेंट चढ़ के ना कुछ ऐसे कम कर जाता है, कोई ऐसी बात कर जाता है जिसका उसको मुद्दतों पछतावा होता है, बल्कि ये कह लें कि सारी ज़िंदगी उसको वो पछतावा रह जाता है। तो हमारा जो गुस्सा है, ये जो चंद अल्फाज है ना, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड की बात होती है, किसी ने कोई बात कह दी या कोई ऐसी गलत बात कह दी या ऐसी बात जो आपको अच्छी ना लगी या आपके मिजाज पे गना गुजरी, आप यकीन जाने सिर्फ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड की बात है। अगर हम खामोश हो जाएं, चुप हो जाएं, उस बात को पी जाएं, हम बहुत से मसलों से बच सकते हैं। आज मैं जब आ रहा था ना, तो मेरा मूड टोटली एक डिफरेंट सिनेरियो के ऊपर था। आज मैंने सोचा कि शो में कुछ डिफरेंट किस्म का टॉपिक, फॉर्मेट, चीज़ें, बहुत चीज़ें आप सोचते हैं ना जब आपने जाना होता है, और 101 इंटरनेशनल पे पूरे पाकिस्तान से हमारे साथ दोस्त होते हैं, और
यू नो दिस इज़ लाइफ, यू नेवर नो वट गना बी हैपन, अगले ही पल क्या हो जाए, अगले लम्हात में क्या हो जाए, क्या हो सकता है, आपको कुछ नहीं पता. सो आपको हमेशा उसके लिए रेडी रहना चाहिए. ये बात बताने का मकसद सिर्फ तहद्दुस से नेमत के तौर पे मैं एक बात शेयर कर रहा हूँ. सो मेरा ना प्लान टोटली डिफरेंट था. तो मैं जब आ रहा था तो एक साहब, मैं गाड़ी, मैंने टर्न काटी और मैं मिडल ऑफ द रोड था, यानी कि मैं पूरी टर्न काट चुका था. दूसरी साइड से एक साहब आए और फुल स्पीड से मोटर बाइक पे, यानी कि इतनी स्पीड थी, वो एक बिल्कुल पतली सी रोड थी जहाँ पे आप 10 या 20 से ज़्यादा स्पीड की गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं चला सकते. वो साहब तकरीबन कुछ 40 से 50 की स्पीड पे थे और उन्होंने देखा नहीं और ना ताओ देखा और सीधा स्ट्रेट हिट कर दिया. अच्छा, एट द पॉइंट यू नो आपको थोड़ा सा होता ही है कि यार एक बंदा आप मतलब मिडल ऑफ रोड हैं और सारे लोग देख रहे हैं कि बंदा साहब आ रहे हैं और इतनी पूरी स्पीड से उन्होंने गाड़ी को, जो भी हुआ वो नुकसान वो अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह की बेहतरी होती है हर हाल में हर चीज़ में. बट मैं जो बात कर रहा हूँ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड की बात होती है कि वो साहब मोटरबाइक से गिरे, जो मेरी गाड़ी को नुकसान होना था वो तो हो गया. तो मैंने उसे पूछा तुम्हें चोट नहीं लगी, वो आगे से मुझे डांटने लग पड़े साहब, मतलब बाकायदा तौर पे साहब ने मुझे डांटा. मैंने कहा जी आपको नज़र नहीं आता. तो मैं खामोश हो गया, मैंने कहा जी ठीक है सर मुझे नज़र नहीं आता. तो इर्द गिर्द जो लोग थे ना, मतलब जितने भी लोग थे, उन्होंने उस बच्चे को पकड़ा और उसको कहा कि तुम्हें अकल नहीं है कि तुम इतनी तेज़ मोटरसाइकिल चला रहे हो और तुमने आगे हिट किया और ऊपर से तुम इस तरह का लहजे से बात कर रहे हो. सो पॉइंट इज़ दिस, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड की बात होती है. अगर मैं भी थोड़ा सा गुस्सा दिखा देता या मतलब मैं अपनी नाराज़गी का इजहार कर देता कि मेरा नुकसान ऑफ कोर्स ज़्यादा हुआ, लेकिन दिस इज़ लाइफ यू नो. ज़िंदगी में बड़ा कुछ होता है ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की. ये जो दुनिया की चीज़ें होती हैं ये बड़ी नॉर्मल होती हैं, ये बहुत छोटी होती हैं, ये मैटर नहीं करती. आपका नुकसान जो होता है ना ये बड़ा मैटर नहीं करता. मैटर ये करता है कि आप खुद महफूज हैं, अल्लाह ताला ने उसको भी महफूज रखा, मुझे भी रखा, ये ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है. और कोई भी नुकसान होता है ना वो किसी बड़े नुकसान से अल्लाह ताला बचाता है आपको. सो जनाब आज का शो जो था ना वो टोटली एक डिफरेंट था, बट यू नो आपको थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है ना आपके साथ जब कुछ इंसिडेंट इस तरह का होता है. सो मैं ये कह रहा था कि ज़िंदगी इट्स ऑल लाइफ, ज़िंदगी में ऐसा होता है. सो गेट रेडी फॉर एवरीथिंग, कुछ भी एनीथिंग कैन हैपन इन योर लाइफ एंड माई लाइफ. हम सब की ज़िंदगी में यही ज़िंदगी है भाई, दिस इज़ बेसिकली लाइफ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. सो जनाब 111-000-101 हमारे रबते का नंबर जिस पे आप लोगों की कॉल्स हम मौसूल करेंगे. एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक जो कि मैं चलाने जा रहा था, मैं जब स्टूडियो में एंटर हुआ तो मैंने जब ये गाना सुना ना, बस चल रहा था, मैंने ब्रेक लगा दी. मैंने कहा नहीं, I just want to listen these songs again. Lights off करके खामोशी से आप लोगों के साथ आप भी सुनिएगा. Hi. ये चीज़. You are tuned into FM 101. मुझे कहते हैं फरहान खान.

वर्ल्ड्स नाउ वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं सभी सुनने वालों को। थैंक यू सो मच अदील एक दफ़ा फिर आपका फॉर दिस वंडरफुल टी। और रात के इस पहर में अगर आपको अचानक से चाय मिल जाए और आपको दिल भी कर रहा हो चाय पीने को, तो दिल से बड़ी दुआएं निकलती हैं। वो कहते हैं ना, आप किसी चीज़ की ख्वाहिश करें ना, किसी चीज़ की तमन्ना करें और पूरे दिल से करें और फिर पूरे दिल से दुआ करें और उसके बारे में सोचना शुरू कर दें। कोई आपने काम करना है ना, कोई ज़िंदगी में टास्क है, कोई आपका प्लान है ज़िंदगी में, एंड आप उसके बारे में बहुत सोचें, उसके बारे में बहुत काम करें, इतना काम करें उस पर, इतना काम करें, आप यकीन जाने कि आप कामयाब हो जाते हैं। व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि आप कामयाब ज़रूर हो जाते हैं। और कामयाबी यह है कि कामयाबी इज़ नॉट कि आप उसको हम एक्चुअली ना, हम लोगों ने कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं कामयाबी के, सक्सेस के हमने पैरामीटर्स बनाए हैं, सक्सेसफुल इंसान के पैरामीटर बनाए हुए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि हर वो काम जो हम मेहनत से करते हैं, लगन से करते हैं, पूरी जस्तजू के साथ करते हैं, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं, वो काम हमारे लिए कामयाब ही होता है। और जिस काम में आपका पैशन होता है ना, आपकी एनर्जी होती है, आपका पैशन होता है और आप फुल उसमें इन्वॉल्व होते हैं और आपको वो काम करते हुए वक्त का नहीं पता चलता, आप वक्त से आज़ाद हो जाते हैं और आप बस यू जस्ट इन्जॉय योर वर्क, वट एवर यू आर डूइंग। कोई ऐसा कोई भी पॉजिटिव काम जिसको करते हुए आपको बड़ा, आप यू नो, यू इन्जॉय योर सेल्फ एंड यू नो कि आपको लगे कि यार नहीं, ये काम मेरे लिए है, ये काम मेरा काम है, तो उस काम को करते हुए आपको, आप टाइम की बाउंड्री से आज़ाद हो जाते हैं, वक्त से की कैद से निकल जाते हैं और आप उस काम में इतना इन्वॉल्व, वट एवर। और हमारे यहाँ मैं एक रिसर्च पढ़ा था और उसमें ना था कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग जो है ना, उनका हाल ये है कि वो काम कर रहे हैं जो उनका टैलेंट नहीं है, या वो काम जो उनकी एनर्जी, उनकी टैलेंट, उनकी स्किल के मुताबिक नहीं है। एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ कि हम अपनी जो हमारा एक टैलेंट होता है ना, हर बंदा अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकता है, हर इंसान को पता है कि उसका क्या टैलेंट है, उसकी क्या कैपेसिटी है, उसकी क्या स्किल्स हैं, उसकी क्या क्रिएटिविटी उसके अंदर कितनी है, कितना वो उसका इंटेलेक्चुअल जो उसका मियार कितना है, यू नो, एवरीबॉडी नो, हर बंदे को पता होता है। तो हमारे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम जो हमारा इंटरेस्ट है ना, हम उससे हटके काम कर रहे होते हैं। आई नो मल्टीपल इसमें रीज़न इशू आ जाते हैं, बट मैंने कुछ लोगों को देखा है कि जो इतने डिटरमिन होते हैं, वो अपनी एक लाइन उन्होंने ड्रॉ कर ली होती है, एक फोकस बना लिया होता है, यानी एक चीज़ पे वो उन्होंने पूरा डिटर्मिनेशन होते हैं कि मैंने ये काम करना है और यही काम करना है, इसके लिए ही मैं पैदा हुआ हूँ, इस दुनिया में आया हूँ, तो वो उस काम को करते हैं जो उनका पैशन होता है, वो उसी का, वही उनका प्रोफेशन होता है। तो आई थिंक ये जो प्रोफेशन है ना, ये आपका पैशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्रोफेशन, आपका पैशन नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। एक कॉलर हमारे साथ है, लेट्स सी हु इज विद अस। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा नहीं, जा चुके हैं, रियली सॉरी फॉर दैट। एनीवेज, एक ट्रैक मैंने लाइन अप किया हुआ था और दिस इज़ वन मोर ब्यूटीफुल ट्रैक। आई थिंक आज मेरा दिल कर रहा है थोड़े से स्लो किस्म के ट्रैक, जो ऐसे ना स्लो नंबर्स, थोड़े से सूदी से, थोड़े मज़े के, आपको ये गाना अच्छा लगेगा। आई यू लव दैट, ट्रस्ट मी।

0: एग्जैक्टली सांसों की माला में। थैंक यू सो मच आदिल भाई ने घड़ी की तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा जी घड़ी भी कुछ कह रही है, घड़ी ये कहती है कि हमने जाना है इस्लामाबाद और रिमशा ये कहती है कि मैंने आना है ऑन एयर, लेकिन मुझे लगता है मुझे घड़ी की सुननी पड़ेगी, रिमशा की बात नहीं हम सुनेंगे क्योंकि घड़ियाँ ये कहती हैं कि हमें इस्लामाबाद न्यूज़ ब्रेक के जानी पड़ रहा है। लेकिन आदिल भाई अभी मेरे ख्याल में एक मिनट है या ना, चलें ठीक है, मेरे ख्याल में एक मिनट में अब रिमशा की बात हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। फिर छोटी सी बात होगी ना मेरी?
0: हाँ हाँ छोटी सी बात, जल्दी जल्दी से करें, जल्दी से करें, एक मिनट आपके पास।
1: आप पहले न्यूज़ चला लेना, आप न्यूज़ चला लें।
0: मैं न्यूज़ से ला लूँ? अच्छा चलें ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, दोबारा कॉल कीजिएगा। ओके जनाब, सांसों की माला पे और दिस ट्रैक इज़ मास्टर सलीम एंड राहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ को शो में शामिल किया था। एक और ट्रैक बोदी जी ने मुझे कहा है, उन्होंने कहा जी आरजे डॉक्स अपने प्रोग्राम में चलाते हैं, तो मैं आरजे डॉक्स के उस ट्रैक को चलाऊँगा, बट राइट आफ्टर न्यूज़ ब्रेक है।

0: अपने FM 101 ट्यून के
1: सुनते रहिए FM 101 101।

0: रैंडमली जो इसको इस्तेमाल करते हैं, अब देखिए ना 7 से 8 करोड़ लोग जो पाकिस्तान में सोशल मीडिया के सारफीन हैं, 8 करोड़ आबादी जो है वो रेगुलर जो आबादी जो जो इसका इस्तेमाल करे, 8 करोड़ एक बहुत बड़ा फिगर होता है। तो ये वो लोग हैं जो इसके साथ परमानेंटली अटैच्ड हैं। लेकिन देखना ये है कि हम सब दिन में कितना अफेक्टिवली इसका इस्तेमाल करते हैं, कितना पॉजिटिवली इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी इससे हमारी ग्रोथ क्या है, मेंटल ग्रोथ क्या है, हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी कितनी अच्छी हो रही है, हम कितना गेन कर रहे हैं पॉजिटिवली। यानी कि फिर अगर देखा जाए कि सिर्फ वो स्क्रोलिंग है डिजिटल मीडिया की, दैट्स इट, इसके अलावा अगर कोई चीज़ नहीं है तो फिर आई थिंक वी शुड थिंक अबाउट इट, हम इसके बारे में सोचना होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं आप बड़े एंगेजिंग किस्म के हैं। आप सब जानते हैं कि यूट्यूब जो फेसबुक के बानी हैं उन पे बाकायदा तौर पे कोर्ट में मुकदमा चल रहा है कि इन्होंने ऐसे जो फीचर्स जिसके अंदर बनाए हैं फेसबुक के अंदर कि वो आपको एडिक्शन के अंदर ले जाते। बहुत से लोगों ने, बहुत सी फैमिलीज़ ने इनके खिलाफ, जिन बच्चों ने सुसाइड किए हैं जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थे इन प्लेटफॉर्म्स के या गेमिंग के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थे, सो बच्चों ने सुसाइड तक कर ली कि वो इसके बगैर रह नहीं सकते। जैसे उनसे ये चीज़ छीन ली जाती है तो वो, आप देखें ना मोबाइल अगर आपसे 10-15 मिनट के लिए कोई इधर उधर घूम जाता है ना तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जो है ना बड़ी अधूरी सी है, कुछ है नहीं है। सो वी ऑल आर एडिक्टेड कहीं ना कहीं, किसी ना किसी दर्जे पर हम लोग कहीं ना कहीं एडिक्शन का शिकार हैं। सो वी शुड थिंक अबाउट इट कि हमने इस एडिक्शन को अपनी ज़िंदगी से कम करना है। एक बच्चे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बात की बड़ी मज़े की, उन्होंने कहा इसके बगैर भी हम थे ना अर्ली 90s, 80s, 70s या इवन 2009-10 तक, कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त था, अब इंटरेक्शन बड़ा अच्छा होता था, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात करना, एक दूसरे को फील करना, एक दूसरे को बताना कि यार मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है, मेरी नज़र जो है मोबाइल की तरफ नहीं है, मेरी निगाहें जो है ना वो मुकम्मल तौर पे, और मेरा दिल, मेरा दिमाग, मैं मुकम्मल तौर पे आपके पास हूँ जो सामने वाला बैठा है। अब हमारा रवैया ये है कि हमारे हाथ में मोबाइल है, हम स्क्रॉल कर रहे हैं और दूसरा बंदा बड़ा छोटा कोई भी बात कर रहा है, इवन अपने बच्चे बात कर रहे हैं, हम हाँ और ना में जवाब दे रहे हैं। बच्चों के अंदर जो डिले स्पीकिंग आ रही है ना उसकी एक बड़ी वजह ये गैजेट्स या माँ बाप का बहुत ज़्यादा डिजिटल मीडिया पे रहना, ये एक बहुत बड़ी वजह, जो बच्चे अब डिले स्पीच का शिकार हो रहे हैं, लेट बोलना शुरू कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि हम उनके हाथों में गैजेट्स दे देते हैं, क्योंकि वो सारा दिन उस कंटेंट में इन्वॉल्व रहते हैं तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो बात किसी से कर सकें, दे आर ऑल बिज़ी। सो ये है, दिस इज़ फैक्ट ऑफ लाइफ, बिल्कुल ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी सर, कौन है हमारे साथ?
1: नवाब शाह से हाफिज दुर मोहम्मद खासकेली।
0: जी हाफिज साहब, क्या कहेंगे?
1: मैं ये कहूँगा कि जो आप अभी बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के तवसुस से, जब हमारी उम्र तकरीबन 32 साल है अभी, तो मैं आंखों से ब्लाइंड हूँ, लेकिन जब हम मदरसे में पढ़ते थे तब ये मोबाइल का दौर तो उस दौर था ही नहीं, तो हम 2001 मदरसे गए थे। अब जब मोबाइल का दौर ये आया है कि हर बच्चे के, हर बंदे के हाथ में मोबाइल होता है, अब वो जो पहले वाले जो गपशप होती थी या बात सुन रही थी वो अब नहीं रही है।
0: ठीक है, बिल्कुल ठीक,
1: क्योंकि वो पहले वाली चाहत अब तक नहीं है।
0: बिल्कुल ठीक है जी, ठीक हो गया सर, पॉइंट आ गया आपका हाफिज साहब, थैंक यू, सलामत रहें, खुश रहें। अरे जनाब हाफिज साहब हमारे साथ हैं, कुछ मैसेजेस हैं उनको शामिल करते चलें। जी आप लोग करते हैं हमें FM 101 के ऑफिशियल पेज पे। कवल नाज हमारे साथ हैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मदीना हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम आरजे फरहान, वेलकम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शायर कसूर खरल हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग शो, चेयरमैन अल हुसैनी रेडियो लिसनर क्लब। अच्छा जी, नज़ीर हमारे साथ हैं, कंवल नाज कहती हैं आरजे कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपके मैसेज आ गया, थैंक यू सो मच कंवल, थैंक यू सो मच। मलिक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी, सियालकोट की जनाब मैंने वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ ज़रूर शेयर करनी है, वेरी इंटरेस्टिंग اسٹم سیالکوٹ, ہر طرف پورے دنیا میں سیالکوٹ سیالکوٹ ہو رہا ہے. مرینا تھینک یو سو مچ اگین, ملک وسیم اوان تھینک یو سو مچ, اینڈ آپ سب کا بہت بہت شکریہ میسیجز کرنے کا, پروگرام میں شامل ہونے کا. ایک کالر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ایک بہت ہی زبردست ٹریک میں نے لائن اپ کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر, زبردست شو, سپر ڈپر سر, تہاڈی آواز سنی دل نوں سکون ہویا سر.
0: اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے, دل نوں سکون ہو گیا.
1: ہاں جی, مزہ نہیں آیا اور دل نوں سکون ہو گیا.
0: اچھا چلو, زندہ باد زندہ باد. کون صاحب؟
1: سر بودی جٹ گل کر رہا ہوں سر.
0: جی جی جناب.
1: سر ماشاء اللہ سونی گلا تہاڈیاں, بڑے دنوں بعد جڑی انہاں آواز سنی ہے.
0: راوی دے کنڈے تو گل کر رہے تسی ہیں؟
1: جی سر بالکل. تیرا تے اپنا نال سر, تسی آؤ کدی نال, اپنا دوست تے انہیں سولر پلیٹاں دے ترپائن لائی کی ٹھنڈا پانی ہے سر, گرمی دی تانوں.
0: اچھا واہ, ترپائن دا پانی ہے, کیا بات ہے.
1: جی سر خیر
0: زبردست. جی بودی صاحب
1: خوش آمدید سر, تانوں بودی جٹ دو ہتھاں نال سر سلوٹ کردا ہے, تے تسی آؤ پورا پروٹوکول سر دیاں گے.
0: کیا بات ہے, دریا راوی کا کنارہ ہے, شام کا وقت ہو, ٹھنڈی ہوا ہو, دریا کا منظر ہو, اور غروب آفتاب ہو, ٹیوبویل ہو, اور پکنک ہو, ہے ساتھ ساتھ آم ہو, ہے چونسا آم.
1: اوئے
0: ہوئے, نہ کرو نہ کرو, آپ فون پر آپ بند کرے, فون میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا ضرور سر ضرور, تھینک یو سر, بہت شکریہ, زندہ رہو جی, اللہ
1: حافظ.
0: کیا بات ہے جی, مودی جی نے جڑا منظر کھینچ چھڑیا نا, میرا دل کر رہا ہے کہ میں ہونے ٹر جاؤں تھے. اوکے جناب, میں نے جو ٹریک چلایا اٹس اے بیوٹیفل ٹریک, آئی جسٹ لو اٹ, آئی ڈونٹ نو, بٹ آپ لوگ سنیے گا, آپ کو بھی بہت پسند آئے گا. اینڈ دا ٹریک از کالڈ بازی. کیا بات ہے,

0: तो बाजी हार चुकी हूँ। वेलकम बैक टू द शो, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं सब सुनने वालों को। रेडियो पाकिस्तान FM 101 के लाहौर स्टूडियो से मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान फरहान खान। और आज का जो हमारा मौजू है दैट इज़ के सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, क्या सोशल मीडिया हमें इस्तेमाल करे कि हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, क्या हम इसकी एडिक्शन में इतना खो गए हैं कि हम अपने आप को भूल गए, हम जिंदगी की जो रोनाइयाँ हैं ना, खूबसूरतियाँ, उसको भूल गए हैं। मुझे ऐसे लगता है, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि शायद हम में से बहुत से लोग हैं कहीं के दिन जो है ना कुदरत से लुत्फ़ानंदोज़ नहीं होते, कुदरत के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ानंदोज़ नहीं होते। आप चांद को नहीं देखते कितने कितने दिन, सूरज का सामना नहीं होता, खूबसूरत मंज़र नहीं देखते, जो अपना जो खाना है ना इवन उसको भी हम इंजॉय नहीं करते, अपनी चाय को इंजॉय नहीं करते, जो अल्लाह ताला की नेमतें उससे लुत्फ़ानंदोज़ नहीं होते। इतना हम इन्वॉल्व हो जाते हैं इन गैजेट्स के अंदर, इन सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर, कि हमें होश ही नहीं रहती कि दुनिया में और भी कुछ हो रहा है, और भी कुछ देखना है। हम उन सब चीज़ों से हट जाते हैं। देखिए, हम सब ये फील कर सकते हैं, हाथ में मोबाइल है हम खाना खा रहे हैं, हाथ में मोबाइल है हम चाय पी रहे हैं, हाथ में मोबाइल है और हम गुफ्तगू कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी साथ साथ चल रहा है। हम जो लज्जत है ना चीज़ों की, जो अल्लाह ताला की जो नेमत है, उससे भी महसूस नहीं हो रहे। हमने अपने आप को इतना उस आर्टिफिशियल लाइफ के अंदर कैद कर लिया हुआ है। बहरहाल, ये एक फैक्ट है जो कि जहाँ पे मैंने इसकी पॉजिटिव बात की वहाँ पे ये बिल्कुल नेगेटिव एलिमेंट हमारी ज़िंदगियों में है कि हम वक्त का बहुत ज़्यादा ज़िया कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक और जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो ज़हनी दबाव, डिप्रेशन है। उसमें आप देखेंगे ये सोशल मीडिया, चूँकि ग्लैमराइज दुनिया होती है, हम लोगों को देख के ये, चूँकि मेरा इंटरेक्शन बहुत से साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के साथ होता है, वो ये बताते हैं कि दूसरों की जो एक फेक ज़िंदगी है ना, खुशहाल ज़िंदगी, या लोग ग्लैमराइज करते हैं अपने आप को, थोड़ा सा एक स्टाइल अपना, एक ऑरा लाइफ का दिखाते हैं। मेजॉरिटी वो ऑरा ठीक नहीं होता, मेजॉरिटी वो स्टाइल ठीक नहीं, लाइफ स्टाइल ठीक नहीं होता। जो दूसरे लोग जो होते हैं ना, वो देखने वाले उसको देख के डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, उसका स्टाइल, उसकी चीज़ें। आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें अब तो एक्सपोज हो चुकी हुई हैं, कि डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स जो अपनी गाड़ियाँ, चीज़ें ये दिखाते हैं, वो बहुत सी चीज़ें जो फेक होती हैं, उसको देख के दूसरे लोग जो है ना उससे इंस्पायर हो रहे होते हैं, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। अच्छा, फिर उसके साथ साथ ये है कि एक ही घर में बैठे एक दूसरे से मोबाइल का इस्तेमाल और गुफ्तगु नहीं हो रही कितने कितने दिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन
1: जी? शहजाद बात कर रहा हूँ लाहौर से।
0: जी शहजाद साहब, क्या कहेंगे आप?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तबीयत ठीक है?
0: बिल्कुल सर, मिजाज बखैर है, हर तरफ खैर ही खैर है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपके टॉपिक पे थोड़ी सी बात करनी चाहता
0: हूं। जी जी सर, प्लीज।
1: मेरी बहनें भी सुन रही होंगी। तो असल में एक कलमिया बन गया हुआ है आजकल, हर घर के अंदर प्राइवेसी का मतलब के लड़ाई होती है
0: सर।
1: कोई बच्ची है कि इसमें शादी करके आती है, वो कहती है कि मेरी ननद मेरे कमरे में क्यों आई है, तो मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब हुई है।
0: ठीक है।
1: मेरी सास है, वो कमरे में क्यों आई है, मेरी प्राइवेसी वो डिस्टर्ब होती है
0: सर।
1: तो अब सोशल मीडिया पे अपनी प्राइवेसी तो दिखा रहे हैं लोग।
0: जी सर।
1: तो वो मैं ये परेशान होता हूँ बाद वक्त सोच के कि ये मतलब किस तरह की मतलब कोई मुनाफ़त है, क्या है कि अगर पैसे मिल रहे हैं तो सारा कुछ ठीक है।
0: ठीक।
1: तो अगर घर के अंदर कोई आपको अच्छे बुरे के बारे में कोई बड़ा कहता है, तो आप उसको प्राइवेसी का नाम दे के अपनी जिंदगी खराब करते हैं।
0: देखिए, तो जब कोई बंदा सोशल मीडिया पे आ जाता है ना, डिजिटल मीडिया पे अपना कंटेंट बना रहा है या अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, तो उसकी कोई प्राइवेसी नहीं रहती। प्राइवेसी उसकी होती है कि जो बंदा एक बिल्कुल हिडन है, और जो जो जो सिर्फ देख रहा है, व्यू कर रहा है, एक्सपोज नहीं कर रहा। तो इसीलिए ये आई एग्री विद यू, ये चीज़ें होती हैं, बट ये है कि प्राइवेसी जो है ना, वो प्राइवेसी पता है सबको कि प्राइवेसी क्या है, हर एक को पता होता है सर।
1: मैं फिर यही बात कहनी चाह रहा हूँ
0: सर
1: कि हम माशाल्लाह, मैं मेरी इस वक्त 45 ईयर की उम्र है, 45 साल की
0: माशाल्लाह
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शादीशुदा आदमी हूँ,
0: अच्छा।
1: बच्चों का बाप हूँ,
0: जबरदस्त,
1: ठीक है ना जी। तो हमने अपना दौर देखा हुआ है कि हमारे घरों में जो हमारे बड़े थे वो हमको जोड़ के रखते थे, बहन भाइयों को।
0: जी जी जी, नहीं नहीं, अभी भी सर है, जोड़ के रहते हैं, अभी भी है माशाल्लाह, बहुत से घरों में ज़्यादातर है ये ना, कुछ थोड़ा सा है, तो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर कुछ लोग हैं, अदरवाइज माशाल्लाह हमारा फैमिली सिस्टम अभी भी अच्छा है, लोग मिलते हैं, फैमिली एक दूसरे की कदर करते हैं, बड़ों की कदर की जाती है, रिश्तों की कदर की जाती है। ठीक सर,
1: मैं आपको एक छोटी सी, अगर थोड़ा सा आपके पास टाइम हो तो, एक आपकी लिखी हुई एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ।
0: सर जल्दी से प्लीज।
1: तुम क्या जानो प्यारे दोस्त, मेरे दिल की हालत क्या है, तड़पता हूँ हर घड़ी हर पल, देख के तमाशा अपनी बेबसी का और अपनी बेकसी का, और सोचता हूँ कि काश कोई तो हो मेरे दिल का महरम, जो मेरे दिल की बात समझ सके, जिसको के मेरे दिल का हाल मालूम हो और वो मुझे सच्चे दिल से प्यार करे।
0: अच्छा,
1: काश कोई तो हो, कोई तो हो ऐसा। तो ये मेरे दिल की आवाज है।
0: सर, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, जीते रहें, जीते रहें, सलामत रहें। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ये कॉलर हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कौन बात कर रही है?
2: सीमा खान।
0: उज़्मा खान जी, उज़्मा क्या कहेंगी?
2: सीमा।
0: सीमा जी जी, सीमा कहाँ से बात कर रही है? सीमा
2: कराची से।
0: चले, कराची से बात, कराची से पहली कॉल आई है मुझे। अच्छा जी, क्या कहेंगी सीमा?
2: आपकी सो नहीं सुन पा रही।
0: चलें, ज़बरदस्त है। कराची का मौसम कैसा है? गर्मी है,
2: गर्मी भी है,
0: हवा भी चल रही है। अरे वाह, कराची में हवा बड़े मज़े की चलती है ना, तेज़ हवा चलती है। चलें, ज़बरदस्त है सीमा, खुश रहें, सलामत रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और जनाब सीमा हमारे साथ ही, लेट्स सी हु इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
0: ओहो, कराची, वन मोर कराची। अच्छा,
3: दूसरी कॉल आ गई,
0: दूसरी कॉल कराची से। कराची जिंदाबाद,
3: कराची जिंदाबाद, आप लोग भी जिंदाबाद, लाहौर वाले।
0: चलें, जबरदस्त है
3: फरहान। आज वैसे मैं सोच रही थी, फिर मेरी कॉल मिल गई तो मैंने पूछना है, फरहान खान साहब सब खैरियत?
0: आप सोच रही थी, सोचती भी आप?
3: मैं सोच ही नहीं।
0: नहीं नहीं, वो पंजाबी की आपको समझ नहीं आएगी, वैसे वो पंजाबी में कहते हैं सोची पिया ते बंदा गया है जी।
3: हां, ये भी सही है, सोचने लगा तो बंदा गया।
0: हां, ज्यादा ना सोचा करें।
3: हाँ, ज़रा कम कम सोचा करें। लेकिन आज आप सॉन्ग वैसे लेकर आए ना, मैंने कहा अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, फरहान की बेगम सुन रही हूँ अल्लाह।
0: अच्छा, उससे क्या होगा?
3: हाँ, बहुत अच्छा, बड़ा मज़ा आएगा।
0: अच्छा, मज़ा आएगा, यानी मेरा दरवाज़ा नहीं खुलेगा, घर नहीं जा सकूँगा, ऐसे ही है।
3: अरे बेचारी खवातीन, कितनी मेहनत और हिम्मत कहाँ कि वो दरवाज़ा,
0: इतनी हिम्मत कहाँ, अगर आपने बड़ी हिम्मत से बात कह दी है।
3: नहीं नहीं, मज़े नहीं, सच्ची बात है।
0: इतनी हिम्मत कहाँ है, क्या बात है।
3: हाँ, इतनी हिम्मत कहाँ, बिचारियों,
0: ओए बिचारियाँ, अल्लाह अकबर, यानी कि इतनी हिम्मत भी कह दी और बिचारियाँ भी कह दिया। ओए, हाँ, मुझे लगता है मुझे बस अभी साइन ऑफ कर देना चाहिए आपकी बातें सुनने के बाद, मेरे पास राय कुछ नहीं कहने को।
3: नहीं, आप घर जाए, फिर अगले हफ्ते मुझे बताइएगा।
0: ठीक है जी, ठीक है।
3: आज जो आपने वो सुनाया ना, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम, इतना प्यारा, मैंने फर्स्ट टाइम सुना था।
0: अच्छा, आज पहली दफा सुना आपने?
3: हाँ, वो उनके आवाज में तो सुना है, नुसरत साहब की आवाज।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
3: लेकिन ये रिमिक्स जो हुआ, ये बहुत अच्छा लगा, बहुत।
0: चलिए, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी।
3: आज सारे सॉन्ग आपके बड़े प्यारे प्यारे हैं, मैंने कहा आज फरहान से।
0: चलिए, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
3: तो है ना
0: जी, जी बिल्कुल सब। मैं कहता हूँ कि तबीयत बहाल है, जिंदगी कमाल है।
3: माशाल्लाह माशाल्लाह,
0: तबीयत बहाल है, जिंदगी कमाल है,
3: जिंदगी कमाल है, बिल्कुल हकीकत है फरहान, बातें तो बहुत अच्छी करते हो भैया।
0: हाँ, बस आप
3: आ जाते हैं, वैसे
0: बस आपकी कॉल आती है उसके बाद ही कुछ होता है, वैसे उससे पहले तो बस ऐसे ही चल रहा था।
3: थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, शुरू से बहुत अच्छा प्रोग्राम है। याद था मुझे कि आज आना है मिस्टर फरहान को,
0: चलिए
3: मुझे पता होगा ना भी कितनी तौर पे लगेगा।
0: हाँ वो तो सिग्नेचर सॉन्ग है ना, वो तो चलना जरूरी था।
3: नाम पता चल गया हुजूर वाले।
0: अच्छा, नहीं मजा नहीं आता ना फिर, देखे ना तशनगी रहनी चाहिए वैसे चीजों की ना, जैसी खत्म हो जाती ना वो चीज रहती नहीं है ना।
3: अब पता नहीं क्या वजह है इसकी, ये तो आप लोग समझते होंगे, लेकिन खैर फारा निकल आया।
0: चले जबरदस्त, अच्छी बात है, अच्छी बात है।
3: अच्छे सॉन्ग है इनके सारे ही, बहुत अच्छे हैं। माँ वाला जो है वो भी बहुत अच्छा है।
0: बड़ी रिसर्च की आपने, मेहनत की है।
3: वो मैंने आपके यहीं से किसी ने लगाया था, कहीं डॉक्टर के प्रोग्राम में था या रहमान के अजिया की, यही मैं सुनती हूँ बस, तीन चार
0: अच्छा
3: ना रात के 10 से 12 या 12 से 2।
0: सारी आर्जेस बड़े जबरदस्त है 101 के।
3: अब मैं सबको तो नहीं सुनती हूँ फरहान, जो बात सही है।
0: नहीं नहीं आप सुना करें। और आपको पता है कि हमारे बड़े ही जबरदस्त आरजे, मैंने एकदम मैसेज खोला और मुझे पता चला कि मुझे सुन रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे जबरदस्त समाते, ऐसी जबरदस्त आवाजें इस वक्त हमें सुन रही हैं। जी
3: एकदम डॉक्टर से बाजी बड़े मैसेजेस आते हैं।
0: जी जी नहीं नहीं ये हमारी बड़ी बड़ी जबरदस्त आरजे हैं, आरजे निमरा, और शी इज अ वंडरफुल आरजे। आरजे मसूद को तो आपने सुना होगा।
3: मसूद को तो मैंने बहुत अरसे से नहीं सुना, मैं उन्हीं की खैरियत तो आपसे पूछना चाह रही थी।
0: अच्छा अच्छा,
3: कैसे है वो, कहाँ हैं?
0: ठीक हैं वो, इंशाल्लाह जल्द आएंगे।
3: चले इंशाल्लाह ताला, बस अल्लाह उन्हें अपनी जमान में रखे। और आप जो बात कह रहे थे ना फरहान, वो कार्ड वगैरह व्हाट्सएप पे भेज देते,
0: मैं
3: समझती हूँ इससे अच्छा कोई और जरिया हो ही नहीं सकता। हाँ मखा तकल्लुबाजी हैं, घर घर जाएं। आपने बहुत प्यारी बात की कि हाँ कोई अगर ख़ानदान के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास बात अब तरीके से जाएं, उनकी खिदमत में कार्ड पेश कर दें, लेकिन सबको तो भाई व्हाट्सएप करें। आज इतने तेज़ी का ज़माना है, जरा हमें कहाँ से कहाँ वक्त जा रहा है, इसी तकल्लुफ में लग रहे हैं, हम उसको कार्ड देने जा रहे हैं।
0: कहाँ से कहाँ वक्त चला गया है, अभी 11:30 हुए, अभी अभी अभी
3: मिल गई, शुक्र है मेरी कॉल, मैं दुआएं मांग रही
0: थी।
3: तो खैर लेकिन प्रोग्राम फरहान का बहुत अच्छा होता है, बातें भी बड़ी अच्छी है, सॉन्ग भी अच्छे, खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं।
0: बहुत शुक्रिया जी, कराची वालों का शुक्रिया, जीते रहें कराची वाले, सलामत रहें। कराची जो है ना, आपको पता है पाकिस्तान की मईशत जो है ना, वो कराची ने बड़ी जबरदस्त तरीके से
3: संभाल रही
0: है। जी जी आपके दम से चल रही है। अच्छा नहीं आपने इसने बोला हमारे दम से तो चल रही है ना, हमारे दम से तो चल रही है ना,
3: हमारे दम से मुराद है हम कराची वाले।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि आप कह रहे हैं कि आपके दम से चल रही है, हमारे दम से तो चल रही है ना। देखिए जी कराची की जो मईशत है ना, पाकिस्तानियों से चल रही है, पूरा पाकिस्तान इसको चला रहा है, पाकिस्तान। जी जी
3: बिल्कुल, तो आपने सही कहा, हमें आप लोगों जैसी बातें तो आती नहीं, उसकी
0: नहीं, नहीं,
3: आप... लेती हूं, सारी तरह की बातें डॉक्टर।
0: नहीं नहीं अरे आप तो बहुत अच्छी बातें करती हैं, कैसी बात की आपने, ऐसे ना करें, आप बहुत खूबसूरत बात, हमें अच्छा लगता है। कराची वालों से तो वैसे ही बड़ा प्यार है हमें। चले जी अंजुमन भाई में सताइश को खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच आपका, सलामत रहे। मुझे आप क्या, अब क्या सुनाएंगी, खरी खरी तो नहीं सुनाएंगी?
3: नहीं नहीं नहीं नहीं
0: जी जी जरूर प्लीज। अच्छा
3: जी, अच्छा ये क्या था, वैसी ही शोक वैसी ही तेज़े अदा से आप घायल हो गया।
0: अरे वाह,
3: अपनी ही तेज़े अदा से आप घायल हो गया, चांद ने पानी में देखा और पागल हो गया।
0: हुए, हुए, हुए,
3: हुए। वो हवा थी शाम ही से रस्ते खाली हो गए, वो घटा बरसती कि सारा शहर जलथल हो गया।
0: हुए, हुए,
3: मैं अकेला और सफर की शाम रंगों में ढली, फिर ये मंजर मेरी नजरों से ओझल हो गया। अब कहाँ होगा वो, और होगा भी तो वैसा कहाँ, सोच कर ये बात जी कुछ और बोझल हो गया। उसकी दहशत अजीब थी वस्त्र की शब में मुनीर, हाथ ऐसे हाथ जैसे इंतहाई शौक से शल हो गया। चलिए छोटी सी सुनाइए, ज्यादा।
0: वाह वाह वाह जबरदस्त, आपने जो ये गजल सुनाई है ना, तो इसके बाद मेरा दिल किया अचानक से ये ट्रैक सुनवाने को, क्योंकि थोड़ा सा मिलता जुलता है। थैंक यू जी,
3: ये रो ढेर दुआएं आपके लिए,
0: बहुत शुक्रिया,
3: जो भी सुन रहे हैं मुझे, सबके लिए, जीते रहिए,
0: अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब कराची वाले बहुत शुक्रिया आपका। आज निमरा इस वक्त हमें सुन रही है, थैंक यू सो मच निमरा आपका प्रोग्राम में शामिल होने का। एंड आई एम श्योर मसूद साहब, नहीं मसूद साहब तो इस टाइम नहीं होंगे, आज क्या दिन है, नहीं मसूद साहब नहीं, आज फ्राइडे है, नहीं नहीं जी मसूद साहब नहीं होंगे, तो मसूद भाई थैंक यू सो मच, आप भी जहाँ भी हैं खुश रहें सलामत रहें। सो यू गाइज आर ब्यूटीफुल पीपल और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारे आरजेज हैं और मैं बड़े शौक से इन सबको सुनता हूँ। अच्छा जनाब, अभी जो ट्रैक मैं चलाने चाह रहा हूँ, चूँकि मैडम ने बड़ी अच्छी एक गज़ल सुनाई, तो वैसे ज़िंदगी में होता ना, हर इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता ना, कभी किसी ने आपका हाल पूछ लिया हो और आपकी आंखों में आंसू आ गए हो, कभी किसी ने आपका हाल पूछ लिया हो तो किसी की याद आ गई हो, बताइएगा ज़रूर।

0: पूछा किसी ने हाल किसी का तो रो दिए, पानी में अक्स चांद का देखा तो रो दिए। अच्छा ये कॉलर हमारे साथ है, मैं आशीष इसलिए रहा हूँ कि निम्रा कह रही है कि बच्चे भी सुन रहे हैं आपको। चलें बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हो? सब खैरियत से हो? अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, क्या हाल फरहान भाई?
0: जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। सर सर सर सर बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। पहले भी आपसे बात हुई थी ना
1: एक दो सलाम दे दूं?
0: आप दो एक दो मतलब तीन सलाम देनी आप दे दें जी।
1: किताब लाला, इमरान भाई, वसीम, सब सलाम।
0: चलें बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी।
1: बड़ी
0: मेहरबानी सर। कराची से बोल रहे हैं आप? कराची से? चलें जबरदस्त
1: बना रहा हूँ अभी।
0: अच्छा बनाए बनाए घर में बना रहे हैं?
1: नहीं नहीं दुकान है, छोटा सा टुकराई हुई थी।
0: अच्छा अच्छा पान की दुकान है। चलें जबरदस्त जी, खाएं पान।
1: सलामत रहो, सलामत रहो, खुश रहो, सबको सलाम।
0: ओके जी, वालेकुम सलाम। अच्छा ये मज़े की बात है, वैसे पान भी मुफ्त में आपको मिल जाता है ना। हाय पूछा किसी ने हाल किसी का तो रो दिए। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: ओ खैर, क्या हाल है जनाब? ठीक हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। लग नहीं रही।
0: अच्छा जी क्यों?
2: नहीं लग रही, लग ही नहीं रहा। मुझे लग रहा था बस आज मैं ना पोला के आया हूँ, जना कोला मिला
0: फिर बच गया।
2: बच गया हो थोड़े वगैरह।
0: चलो जिंदाबाद जिंदाबाद,
2: अल्लाह आपको भी सलामत रखे। अब मैं तो सोच रही थी कि बस फिर कोशिश ही है, करते कोई बात नहीं, ट्राई ट्राई अगेन।
0: हाँ देखे ना,
2: मेरे बहन भाई मुझे याद कर रहे थे, उनके लिए बहुत सी दुआएं, हमना रिमशा और बुद्धि जट और जितने बहन भाई आए देखे मुझे याद कर रहे थे। तुसी ते गलती नाल भी नहीं याद करना।
0: हाँ कितना सच बोल देना तुसी।
2: तानू बिस्किट ते चाह दी पई।
0: नहीं नहीं वो लव ही है, चाय भी पी ली, बिस्किट भी और नान भी था वैसे तो।
2: अच्छा बस उसी नान ना करती होनी है।
0: ना हाँ हाँ नान को ना कर दी। वाह वाह वाह क्या बात है, क्या कहने हैं, वाह जबरदस्त।
2: अच्छा मैंने वो मिला है ना, मैंने गुफ्तगू को, सुरों को, लब्जों को, सॉरी है ना, अदा बजे अदा बजे।
0: चलें जी बिला तामिल लब कुशाई कीजिए।
2: मुझे मिल नहीं, सॉरी,
0: बिला तामिल लब कुशाई कीजिए, बताएं यार बात करें।
2: लफ्ज़ नहीं मिल रहा था ना, वो परवीन साहिबा कह रही थी वो जहाँ पना
0: खवातीन का एक बड़ी जबरदस्त क्वालिटी याद रखती है।
2: नहीं
0: लाहौर, लाहौर है जी, लाहौर अपना
2: तो
0: एक दोस्त आए थे, बड़ा अच्छा उन्होंने बात की, उन्होंने कहा लाहौर शहर जो है ना, लाहौर शहर की खासियत ये है कि आप जैसे हैं ना लाहौर आपको वैसा वैसे ही लेता है, रखता है आपको।
2: हाँ,
0: अदब का गहवारा है ना, मोहब्बत का गहवारा है लाहौर। अगर आप शायर हैं तो लाहौर आपको शायर मशरिक बना देता है। अगर आप मौसीकार हैं, आप सिंगर हैं तो आपको नूर जहाँ बना देता है, मेहदी हसन बना देता है। और मतलब आप जिस तरह की है ना लाहौर आपको वैसे मिलता है जरूर, आपको वैसा
2: आपको वैसी वैल्यू दी जाती
0: जी,
2: है
0: जी। एग्जैक्टली ऐसे मैं लाहौर लाहौर है,
2: लाहौर।
0: अच्छा क्या कहेंगे जी आज के मौजू के हवाले से कुछ? बिल्कुल ऐसे
2: मौजू आपने जो रखा हुआ है, ये मौजू दो तीन किस्म के उसमें
0: आप दो तीन तरफ ले जाए, आप हर रुख से बात करें। हाँ
2: मतलब इधरों फड़के उधर जिथे
0: तानू जड़ी समझ लगदी तो उस ते गल करो। अच्छा वैसे ऐसा है ना कि जो सोशल मीडिया ये हम इसको कम इस्तेमाल करें, ये हमें ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये हमें ज़्यादा घुमा रहा है। इसने अपने एल्गोरिथम्स के अंदर, अपने एल्गोरिथम्स में ऐसा हमें घुमा दिया है कि बस हम घूम गए, अब चक्कर ही आ रहे हैं बस, है ना?
2: ऐसे ही है। वो मेरे कज़न थे ना, उन वो पंजाबी, उनको मतलब बाहर ही रहते थे वो, यहाँ लाहौर पाकिस्तान में कम ही रहे हुए थे, तो बड़ी कोशिश करते थे इंग्लिश के साथ पंजाबी का टच देते थे। उनको हमने कहना ना आपने इधर से ना आगे जाके सॉरी आपने ना इधर से मुड़ना है, तो आपने इधर फोन देना, तो आप कहते हैं हाँ मैं इधर पहुंच गया हूँ, फिर मैं इधर पहुंच गया इनको देखो पंजाबी का कितना शौक है, साथ कह रहे मैं इससे पहुंच गया हूँ और इधर से मैं तो ना पहुंच गया हूँ। तो वो बात ये कि जो सोशल मीडिया है और जो हमारी जनरेशन है, पहले तो जनरेशन ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया,
0: ठीक है,
2: अंधाधुंध इस्तेमाल शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता, अब जनरेशन खुद इस्तेमाल होती जा रही
0: है,
2: रंग बिरंगे चेहरे बनते जा रहे हैं, कोई कुछ अपने आप को बनाई जा रहा है, कोई कुछ अपने करेक्टर में शामिल करी जा रहा है। अब मतलब हकीकत पे तो हम रह ही नहीं ना रहे, अब ख्वाबों में जाई जा रहे हैं सोशल मीडिया के चक्कर में। आप ये देखिए हकीकत में रह के काम करने मुश्किल हुए हैं। आप जैसे अब ये कह रहे थे कि वो कार्ड बांटने वाला, देखा जाए तो इसके फायदे भी मिल रहे हैं हमें, लेकिन हम बेजा इस्तेमाल में नुकसान भी उठा रहे हैं बच्चों की जहनीत क्या से क्या। आप देखिए जो AI के क्या वो बना रहे हैं, मुश्तहारा जो बनते जा रहे हैं, वो बच्चा भागा हुआ आ रहा है और कह रहा है जी दरवाजा खोल मुझे बचा लो बेचारा, क्यों क्या हुआ मैं सात वालों की लड़की, और यार ये क्या मिल रहा है बच्चों को, ये क्या चीजें दी जा रही हैं। तो ऐसी चीजें मेरा नहीं ख्याल ये सोशल मीडिया जो इससे को फायदा मिलता होगा बच्चों को। आप अच्छी चीजों की तरफ आए, दीनी चीजों की तरफ आए तो बहुत से फायदे हैं, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उसमें बहुत फायदे हैं। अब ये वाली जो टॉपिक आप छेड़े थे सभी आगे से बात करें कि कार्ड्स की, तो मेरा ख्याल कोई बुरी बात नहीं है। हाँ आप रिस्पेक्टली अपने बड़ों के पास जाएं, बहाना कार्ड का है, लेकिन साथ में उनकी इयादत करना और उनसे प्यार लेना, उनसे दुआएं लेना, बुजुर्गों की खिदमत में हाजिर होना बहुत ज्यादा अच्छा है कि आप उनके लिए कार्ड लेके जाए, जैसे कि परवीन साहब कह रही थी
0: बिल्कुल ठीक है।
2: वैसे जो है इस चीज को इस्तेमाल करते हुए आप फायदा देखें, बचत है बहुत से मामलात में, आप दूर दूर नहीं जा सकते, टाइम की बचत है, पैसे की बचत है, आप व्हाट्सएप कर दें इट्स ओके, कोई हर्ज नहीं है इसमें,
0: बिल्कुल ठीक है।
2: और लोगों को इस टेक्नोलॉजी का फायदा लेना चाहिए,
0: बिल्कुल
2: करना चाहिए, लेकिन कुछ चीजों में ऐसे है ताल्लुकात में बड़ी जो है ना खराबियां आनी शुरू हो गई हैं। आप देखो एक ही घर के लोग होते हैं ऊपर बैठे हुए, नीचे से उनको मैसेज किए जा रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज किया जा रहा है ये सब भाई नीचे आ जाओ या बाहर जाना है चले चलो,
0: आसानी नहीं है वैसे तो
2: जाते नहीं,
0: वैसे आसानी नहीं है, ऊपर कोई बैठा हुआ उसको कहा नीचे आ जाओ भाई खाने पे जाना है या बाहर जाना
2: है।
0: अच्छा इसमें ना मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ चीज़ें ना पॉजिटिव भी हुई नेगेटिव भी हो रही हैं, गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा जन्म ले रही हैं ना। आप मैं अक्सर ना लोगों को ये कहता हूँ कि आप कभी भी कम्युनिकेशन या आप कोई अगर किसी से कोई इख्तलाफ या कोई इशू आ गया ना, आप कभी भी मैसेज पर बात मत करो, उससे कॉल करो, उसको दूबदू बात करो, उसको कॉल करो, उसके सामने जाओ, अपनी खुल के दिल की बात करो। हम मैसेजेस पे ना बात करते हैं तो अगला बंदा समझ कुछ गलत रहा होता है या हम कुछ गलत समझ रहे होते हैं, तो बेहतर है
2: या बताना या एक्सप्लेन करना कुछ अजीब ही हो रहा होता
0: है। जी जी जी ऐसे ही है, बिल्कुल
2: आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि दूबदू जाएं, बैठ के बात करें, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, एक लिमिट में करें, जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करें, बोलते ना जाए उस पर,
0: बिल्कुल
2: हर
0: ऐसे
2: चीज़ पे आंखें बंद करके आप देखिए कितनी फेक न्यूज आ रही होती है।
0: जी जी जी जी बिल्कुल ऐसे ही, और उसको फर्ज समझ के आप आगे शेयर मत करें, ये सबसे बड़ी बात है कि तहकीक के बगैर समझे बगैर, ये सबसे बड़ा कहते हैं बेवकूफ़ इंसान वो है, उसकी निशानी ये है कि बगैर तहकीक के और वो आगे से बात को सुनी सुनी बात को जो ना फैला रही है जो आगे।
2: आप देखिए फरहान कि कुछ दीनी बातें चीजें
0: जी जी
2: जी
0: जी
2: जिनको कह देते हैं कि इनका फरमान है ये
0: जी जी जी जी बिल्कुल ऐसे
2: ये फलानी बात, और उनमें कितनी ही फेक होती है, फिर आपको इतना सवाब मिलेगा आप ये 10 बंदों को शेयर, और नहीं कुछ नहीं होता ऐसा, सवाब अल्लाह ताला ने आपके अच्छे अमल पे ही देना है,
0: बिल्कुल ऐसे।
2: तो ये बिल्कुल फजूल लोगों ने बातें बनाई हैं सोशल मीडिया पे, फिर ये जो आपका आजकल आप स्कैम देख रहे हैं ना कितने हो रहे हैं लोगों के साथ, कितने ज्यादा वो हो रहे हैं कि ये भेज दें वो भेज, आपका सामान आया ले लें, वो नेट पे मैसेज आ गया ये हो गया वो, पता नहीं क्या क्या लोग मैसेज करते हैं और किस किस तरह की हरकतें हो रही हैं, फोनों पे आ रहे हैं स्कैम हो रहे हैं, लोग बेचारे पैसे लुट जाते हैं लोगों के। तो ये टेक्नोलॉजी फायदा मंद तो है, लेकिन इसमें मोहतात रहना भी
0: बिल्कुल ऐसे बिल्कुल जी मोहतात रहना बहुत जरूरी है। नेलिया बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहें, खुश रहें।
2: वैसे मैं पता नहीं क्या करने आई थी, पता नहीं मैं क्या कह
0: रही। चंगा नहीं पता लग गया, अब याद करना था, फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जिंदगी रहे।
2: सुन लो सारे, इन्होंने खुद किया, जैसे पता है कार में तो कर रहे। ओके सब के लिए बहुत ही दुआएं, अल्लाह
0: वालेकुम सलाम।

0: वैसे कितनी अच्छी बात है ना, अनिला को कुछ याद नहीं रहा, जो वो कहने आई थी वो कह नहीं सकी। चले नेक्स्ट टाइम। अच्छा जनाब, सियालकोट की बात चल रही थी तो मैंने मेरा दिल किया कि चूँकि सियालकोट या पाकिस्तान इस वक्त जो फीफा वर्ल्ड कप है उसका एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट इस टाइम जारी है स्पोर्ट्स के हवाले से। पूरी दुनिया में क्रेज़ इस टाइम फुटबॉल का है। 48 टीमें थीं और जो कि पहली दफ़ा हुआ कि कुछ टीमों को इजाफा किया गया और वर्ल्ड कप को थोड़ा सा बढ़ाया गया, यानी कि तीन, पहले ये एक मुल्क में होता था, लास्ट टाइम कतर में ये हुआ था, बड़ी कोशिश की थी जाने की लेकिन नहीं जा सके। लेकिन इस दफ़ा ये जो वर्ल्ड कप है ये तीन मुल्कों में हो रहा है, आप सब जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट में हो रहा है यानी कि USA में, कनाडा और मेक्सिको में। सो आप, चूँकि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम तो नहीं क्वालिफाई कर सकी इसके लिए, बट पाकिस्तान एक एक किक के ऊपर पाकिस्तान है, एक एक फुटबॉल के ऊपर पाकिस्तान है। और पाकिस्तान जो है ना, आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी फुटबॉल हो रहा है, ये फुटबॉल की एक्टिविटीज़ हैं जो रिकॉर्ड हो रही हैं, एक एक एक्टिविटी जो है ना उसमें पाकिस्तान का नाम है। और पाकिस्तान का जो फुटबॉल है जिसको ट्रुंडा के नाम से याद किया जाता है, जो उसका नाम रखा गया है, यानी कि ट्राई से मुराद ये तीन एक लहरें हैं, ओंडा यानी कि ये स्पेनिश लहरें इसको कहते हैं, यानी कि तीन जो मेज़बान मुल्क है ना उससे इसका नाम ट्रुंडा रखा गया, जो कि यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मेक्सिको। सो ये जो फुटबॉल है आप सब जानते हैं कि ये सियालकोट के एजाज़ ही हासिल है, उसकी इंडस्ट्री जो है, ख्वाजा मसूद साहब वेरी वेरी वेरी काइंड एंड वेरी स्वीट पर्सन, बहुत प्यारे हमारे बुज़ुर्ग दोस्त, एंड माशाल्लाह ये एजाज़ पाकिस्तान के नाम है, जारी बात है सियालकोट पाकिस्तान एक ही बात है, एक ऐसा फुटबॉल जो कि जिसने पूरी दुनिया में इस वक्त जो है धूम मचाई हुई है और हर चैनल ने हर जगह इसको कवर किया गया इसके हवाले से कि देखिए, पहले फ़ुटबॉल जो होता था ना इसको कहते थे पहले 32 पीस का कहते थे, ये फ़ुटबॉल है और चार लेयर्स का है या दो लेयर्स का होता था या चार लेयर्स होती थी, चार से मुराद कॉटन की दो लेयर्स होती थी, फिर लेटेक्स होता था, फिर उसके बाद रेक्सियन, उसकी 32 पीसीज होते थे। वो 32 पीसीज जो थे वो हाथ से सिलाई किए जाते थे, जैसे जैसे वक्त गया फिर 32 पैनल से 12 पैनल पे आया, फिर 4 पे आया, फिर 2 पे अब आ गया। अब ये वाला जो फुटबॉल है ना, दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट है ऑल द वे, तमाम फुटबॉल से ये मुख्तलिफ है, जो कि हर एक्टिविटी को ये रिकॉर्ड कर रहा है। इसके अंदर AI चिप्स लगी हुई हैं जो कि 500 मरतबा जो है ना डाटा भेजता है, यानी कि एक एक जो किक है, एक एक जो एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करता है, वो रिकॉर्ड होते हैं, जो कि रेफरी जो होता है उसको डिसीजन लेने में बड़ी आसानी मिल जाती है। और इसके सिर्फ 4 पैनल्स हैं, यानी ये जो जिसको ब्लेंडेड टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं, जो इसमें इस्तेमाल हुई है, सो विच इज़ वंडरफुल आई थिंक। एंड आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, सियालकोट दुनिया के तकरीबन 70% जो फुटबॉल है ना दुनिया में एक्सपोर्ट होता है वो सियालकोट की इंडस्ट्री से होता है, और फीफा वर्ल्ड कप जो है वो भी इस दफ़ा फिर सियालकोट के नसीब में आया, और पाकिस्तान की तरफ से ये पाकिस्तान के बहुत बड़ा एजाज़ है इंडीड, माशाल्लाह। और जो फीफा की ट्रॉफ़ी है ना, वो बड़े मज़े की बात आपको बताऊं कि वो ट्रॉफ़ी जो जीतता है ना उसको, उसकी टीम को वो नहीं लेके जा सकता अपने साथ। सो वो ट्रॉफ़ी जो है ना, वो जो इनका हेडक्वार्टर है ना उसमें रखी जाती है, जितने भी आज तक फीफा वर्ल्ड कप हुए हैं। लेकिन एक फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो ना अर्जेंटीना को मिली थी, चूँकि वो तवातर से वर्ल्ड कप जीते थे, सिर्फ एक ट्रॉफी वो लेके जा चुके हैं, और ये ट्रॉफी भी अपनी अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रॉफी है, एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है। तो पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है जी, हर तरफ पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम सलाम
0: जी। सर एक मिनट आपके साथ
1: जी। एक मिनट, ये कि अनिला पे आई थी, बड़ा अच्छा लगा। तारिक बात कर रहा हूं श्रीनगर लाहौर से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, हां जी बिल्कुल तारिक भाई।
1: मैंने कहा चलो मेरा बनता है फिर कॉल।
0: जी जी जी, जरूर जरूर जरूर। क्या कहेंगे सर,
1: पहचान लिया वैसे आपने मुझे?
0: आप भी तारिक है ना?
1: ये तारिक
0: जी। तारिक साहब
1: बड़ा अच्छा लगा आपका प्रोग्राम।
0: थैंक यू सर।
1: टाइम इज शॉर्ट, नेक्स्ट टाइम बात होगी।
0: सर सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहें। और जनाब हमने भी चाहनी है इजाज़त आपसे, और अदील साहब भी बड़े गौर से मुझे देखे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि बस कर दें भाई, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। डिजिटल के इस दौर में अपने आप को एडिक्शन का शिकार मत कीजिए, थोड़ा सा रिव्यू करें कि हम कितना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, कितना पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं क्या सोशल मीडिया हमें इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। खुश रहें, सलामत रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी ने इतबा की, सांसों ने वफा की। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूसडे इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह निगहबान एंड लव टू ऑल।

मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन आज जो है वो मुलाकात होगी और अब इंशाल्लाह ताला ये सिनेरियो जो है वो चलता रहेगा और इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और जितने लोग ये सोच रहे थे ना कि हाँ अब मैंने कुछ और एक आध महीना नहीं आना, तो उन सबको मैं कह दूं कि मैंने अब आना है, रेगुलर आना है, ठीक है? तो आपने जागना है और मुझे सुनना है। उम्मीद है जी कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक रहे होंगे, खैर खैरियत से रहे होंगे और जिंदगानी आप भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे और जिंदगानी ज़बरदस्त आपकी गुजर रही होगी। और वो मैं प्लान के हवाले से बात कर रहा था कि हम ज़िंदगी में बहुत कुछ प्लान करते हैं, उसके मुताबिक मेहनत करते हैं, एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करते हैं, ज़िंदगी उस तरह से नहीं चल रही होती, हमें कभी मुश्किल लग रही होती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो मुश्किल हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। और बाज़ चीज़ें जो है वो जब हम तरक्की की जानिब गामजन हो रहे होते हैं तो हमारी कुछ चीज़ें जो हम कंफर्ट जोन के अंदर कर रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं और हमें कुछ देर के लिए शायद ये लगने लगता है कि अब चीज़ें तब्दील हो गई हैं या शायद रिवर्ट बैक ना हो जाए या शायद ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में अगर आप मेहनत करना जानते हैं या आप अच्छी उम्मीद रखते हैं, आपकी नीयत अच्छी है और आप कोशिश करते रहते हैं तो ज़िंदगी कभी रिवर्ट बैक नहीं होती। जिस तरह आपकी उम्र आगे बढ़ती है इस तरह आपकी तरक्की भी आगे बढ़ती है। अनलेस एंड अनटिल के आप कोई बड़ा ब्लंडर ना करें, आप कोई ऐसी गलती ना करें कि जो गलती उस रब के निज़ाम के ख़िलाफ़ हो जो उसने निज़ाम बना के रखा हुआ है, तो ज़िंदगी बड़े अच्छे से बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ती है। तो आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई तब्दीली आई है और फ़ौरन से तब्दीली आई है या अगर लेट लेट से तब्दीली आई है और आज उस तब्दीली को आपने एक्सेप्ट नहीं किया या आप कन्फ्यूज़ हैं कि इसको कैसे एक्सेप्ट करें, आपके लिए भी इस वक्त थोड़ी देर के लिए मुश्किल अगर आपके लिए हो रहा है, आपको फील हो रहा है कहीं किसी जगह के ऊपर कि आप जो है वो लड़खड़ा जाएंगे या कहीं आप तजबजा जाएंगे, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। अगर आप एक जगह से आपका कंफर्ट जोन ऑफ होता है तो आप एक दफ़ा फिर से एनर्जेटिक हो जाते हैं। कुछ चीज़ें अगर आपसे खो जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपने समेटना होता है। अगर आपके दो हाथ हैं तो उन दो हाथों में शायद दो ही चीज़ें आ सकती हैं और एक को आपको गिराना पड़ता है शायद बड़ी चीज़ और बेहतर चीज़ को हासिल करने के लिए।

तो जनाब आज के प्रोग्राम में कुछ इस तरह की फलसफाना बातें नहीं होंगी, बहुत सारी और बातें होंगी, बहुत सारी मजेदार बातें होंगी और बहुत सारी मजेदार बातें आज आपसे मैंने करवानी है, आपसे मैंने इतराफ जुर्म करवाना है, आपसे मैंने बहुत सारी डार्क एंड ह्यूमर बातें आपसे करनी है, स्मार्ट बातें आपसे करनी है, ख्वाब और खराफात के हवाले से आपसे बात करनी है। और बाज़ वक़्त कुछ चीज़ें उल्टी चलना शुरू हो जाती हैं, जैसे हम समझते हैं वैसे नहीं चलती और आप उसको तब्दील करना चाहते हैं, तो वो भी आपसे पूछना है।

101 इंटरनेशनल प्रोग्राम को कहते हैं एफएम 101 की फ्रिक्वेंसी इस्लामाबाद से बिल्कुल ब्राह रास्त आज के भी आपके साथ और साथ निभाने के लिए आपको मैं नंबर बताए देता हूं जी कि 0511100101 है राबते का नंबर। इसके ऊपर आप कॉल करेंगे और कॉल करके जो है वो अपनी बातें मुझ तक पहुंचाएंगे, जो भी बातें आपसे पूछूंगा वो आपने मुझे बतानी है।

051-111-0001 और 051-920-2540 ये भी आप मिला सकते हैं और बात कर सकते हैं। इसके अलावा जी फेसबुक के ऊपर भी स्टेटस अपडेट हो चुका है, एक तस्वीर मैंने लगाई है, उसके नीचे आप कमेंट करके अपनी बातों का इजहार मेरे साथ कर सकते हैं। 4471 आपके लिए बिल्कुल मौजूद है, और अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, अगर आपके पास बैलेंस जो है वो कम है, या अगर आप बात नहीं कर सकते, या आप बात करना नहीं चाहते, या आप फोन कॉल के ऊपर बात नहीं करना चाहते, तो आप मुझे मैसेज टाइप कर सकते हैं। मैसेज टाइप करेंगे अपने टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन में जाके, अपना नाम लिखेंगे, अपने शहर का नाम लिखेंगे, FM 101 लिखेंगे, और उसको आप भेज देंगे 4471 के ऊपर, और आपका पैगाम मुझे मिल जाएगा और उसको मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा।

या 40 बरमला कर रहे हैं तो 10 जरूर छुपा के रखते हैं, और उनको काफी अरसे तक छुपा के रखना हमारे लिए बड़ा बेहतर होता है। और राज में चीज रखना ये भी बड़े, वो कहते हैं जी, पते की बात है, और आपके लिए बड़ा फायदेमंद होती है अगर आप हर बात जो है वो कह डालते हैं, अगर आप खुले पेट के साथ आप काम करते हैं तो शायद के आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। और किस बात को कहाँ कितना छुपाना है, कितनी देर तक छुपाना है, ये भी एक फन है, एक आर्ट है, और इस आर्ट को सीखना बड़ा ज़रूर होता है। लेकिन कुछ अरसे के बाद हम उन उन जो छुपी हुई बातें होती हैं उनको हम रिवील करना चाहते हैं, और रिवील करते हैं। फिर कहीं हम किसी महफिल में बैठे होते हैं तो हम वहाँ पे वो बात जो है वो कर रहे होते हैं कि यार उस वक्त में ना ऐसा हुआ था, और फिर ये हुआ था, मैंने उसको बताया नहीं था, और ऐसा हो गया था और वैसा हो गया था। और फिर हम बड़े मज़े से हंसते भी हैं, उससे सीखते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, और बाज़ औक़ात बड़ी दुखी बातें भी होती हैं कि यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो लर्निंग का जो एलिमेंट होता है वो ज़रूर होता है। कहीं हम किसी दोस्त के साथ बैठे हैं, या कहीं चाय पे बैठे हैं, या कहीं हम रेडियो पे रेडियो सुन रहे हैं और आप कॉल करते हैं और मैं आपसे पूछता हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही होगा कि आपकी की ज़िंदगी का कोई ऐसा जुर्म जो आपने किया हो और आज उसका आप एतराफ़ करना चाहते हैं, तो आज की नशिस्त में हम एतराफ़ जुर्म कह लेंगे। कोई भी छोटा मोटा ऐसा जुर्म जो आपने किया हो, और कभी आपने किसी के स्कूल में किसी के लंच बॉक्स में से उसका लंच जो है वो चुराया हो, तो आज उसका आप एतराफ़ कर सकते हैं। कभी ऑफिस के अंदर किसी ने किसी और का काम किया हो और आपने जाके उसका क्रेडिट ले लिया हो, और आपने कहा ये मैंने किया है, और आपने कहा होगा बताना किसी को नहीं लेकिन ये मैंने किया, और इसको सीखा है राज में रखना। तो अगर ऐसा आपने जुर्म किया है तो आपने ज़रूर बताना है। ये काम किसी और ने किया है और बॉस को जाके आपने प्रेजेंट कर दिया और बोले कि सर दिस इज माय एफर्ट। या आप बाजार गए हैं और वहां से आपने कुछ किसी और के लिए कोई गिफ्ट खरीदा है, कोई किसी दोस्त के लिए, या किसी अपने कज़न के लिए, या किसी अपने किसी और ख़ास के लिए आपने कोई गिफ्ट ख़रीदा है, और आप घर आए हैं और उसको आप छुपाना भूल गए हैं, और घर में जो है वो बेगम ने देख लिया है, तो फिर आपने बेगम को बोला है, बेगम ये तुम्हारे लिए लाया है, दिस इज़ फॉर यू बेब। आज आप एतराफ़ कर सकते हैं कि नहीं यार, वो जो मैं परफ्यूम लाया था, या वो मुझे चॉकलेट लाया था, या वो मैं जो स्नैक्स लाया था, वो मैं बेगम के लिए नहीं लाया था, वो मैं अपने भाई के लिए लाया था, या वो अम्मा के लिए लेके आया था, लेकिन बेगम पहले मिल गई तो बेगम को देना पड़ गया। या अगर आप बेगम के लिए लेके आए और अम्मा ने दरवाज़ा खोल लिया और अम्मा ने हाथ में देखे शापर पकड़े हुए, और फिर आपने अम्मा को बोला, अम्मा ये आज आपके लिए मैं ना शवारमा लेके आया हूँ। बेगम ने दूर से मोटी मोटी आंखें निकाली और बड़े गुस्से से देखा और बोला, अच्छा चल तू अंदर पे आ पहले। तो ऐसा कभी कुछ हुआ हो और आपने ये जुर्म अगर किया हो तो इसका आप आज एतराफ कर सकते हैं। किसी की शादी पे आप गए हो और आप दुल्हा दुल्हन को बिल्कुल नहीं जानते, और किसी ने आपको इनवाइट भी नहीं किया, और बस ऐसे ही आप शादी में घुस गए और खाना खा के आ गए हैं और खूब आपने दावत जो है वो लूटी है, तो अगर आपने ऐसा जुर्म किया है तो उसका एतराफ कर सकते हैं आप। ये पहली दफा आप किसी गाड़ी में बैठे हैं और ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं और साथ वाले को आपने बोला, हाँ हाँ मैं बड़ी अच्छी गाड़ी चला लेता हूँ, बड़ा जबरदस्त, मैं तो फुल ड्राइवर हूँ यार, लाइसेंस भी है मेरे पास। और आप पहली दफा उस गाड़ी में बैठे हैं और फिर आप थोड़ी देर में उससे आपने पूछा कि अच्छा ये स्टार्ट कहाँ से होती है। अगर आपने ऐसा जुर्म किया है तो सो डू लेट मी नो, एतराफ कर सकते हैं आज केबी की अदालत में, आप एतराफ कर सकते हैं। हम आपके जुर्म को देख के उसके मुताबिक सजा मुतय्यन करेंगे कि आपकी क्या सजा होनी चाहिए है।

ये कभी ऐसा हुआ हो कि आपने एक दोस्त को बताया हो कि आप जो है वो कराची गए हुए हैं, और दूसरे दोस्त को आपने बताया हो मैं मुल्तान गए हुए हैं, तीसरे दोस्त को बताया हो कि मैं लाहौर में हूँ, और तीनों दोस्तों को आपने अलग अलग बताया, और फिर वो तीनों दोस्त इकट्ठे एक चाय की टेबल पे आपके सामने बैठ जाएं और एक आपको कहे कि अच्छा तुम तो यार मुल्तान में थे, दूसरा कहे नहीं नहीं इसने मुझे कहा था तुम कराची में थे, नहीं यार इसने तो कहा था मैं लाहौर में हूँ, और आप उनका मुंह तक रहे हो और हंसी जा रहे हो और कह रहे हो कि मैं किसको बताऊं कि मैं कहाँ था। अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो तो आप जरूर बता सकते हैं, क्योंकि ये रिसेंटली मेरे साथ हुआ है कि तीनों दोस्त सामने बैठे थे और तीनों को मैंने झूठ बोला हुआ था, और तीनों कह रहे थे अच्छा तुमने मेरे से झूठ बोला, दूसरे कह रहे थे नहीं नहीं इससे तो इससे सच बोला होगा, मेरे से झूठ बोला, हालांकि तीनों के साथ झूठ बोला हुआ था। तो अगर आप ऐसा जुर्म आपने किया है, आप इस ऐसे जुर्म के मुर्तकिब ठहरे हैं, तो आपने आज उसका इतराफ करना है। जी जनाब, प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ होगा जी, और बहुत सारी और भी बातें होंगी, मेरे साथ रहेगा, मुझे आरजे के भी कहते हैं, और एफएम 101 चैनल पाकिस्तान के फेसबुक पेज के ऊपर जाके आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप फोन कॉल के ऊपर बताना नहीं चाहते तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। वक्त हुआ चाहता है 12:14, और ये गाना आपके नाम किए जाता हूँ, सभी के नाम किए जाता हूँ। हाथ से जाने से पहले अगर आप अपॉर्चुनिटी ग्रास्प कर लेते हो तो फायदा हो जाता है, क्योंकि अगर ग्रास्प कर लेते वक्त खत्म होने से पहले।

0: आड़ से लड़ते रहे, हर बार और हम बढ़ते रहे।
1: ओके जी, माजी भी मेरे साथ हैं, सलाम कर रही हैं और प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं, डीपी पसंद कर रही हैं। थैंक यू सो मच माजी भी। ईमान मानो आए हैं जी। अरे वाह ईमान, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। ईमान लिखती है कि अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, गो विद मी। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है ईमान, फटाफट बताओ। फैसल अब्बास लिखते हैं जी कि भाई वेलकम, वेलकम बैक टू द शो। और अच्छा वेलकम लिखना चाह रहे थे, लिखा हुआ है वेलकम टू शो फैसल अब्बास फ्रॉम लाहौर। कब आ रहे हो मेरे शो में फैसल? ईमान लिखती है ब्रदर, टुडे आई एम लिसनिंग टू माय मदर्स, टू माय मदर्स हाउस। ईमान ये लिखा जाता है ब्रदर, टुडे आई एम लिसनिंग फ्रॉम माय मदर्स हाउस। आगे लिखती है जी कि अच्छा ओके ओके, ये ट्रांसलेशन आ रही है मेरे पास, ओके अंग्रेजी नहीं लिखी हुई, मैंने ट्रांसलेशन खोली हुई है। कहती है जी भाई आज अम्मी के घर पे सुन रही हूँ और अलार्म लगा के उठी हूँ कि आज सुनना है हर हाल में। भाई जब जब यहाँ आती हूँ भूल ही जाती हूँ कि मेरी शादी हुई है। हाय हाय, आफ्टर शादी जब भी मैके जाती है ना खवातीन, उनको यही लगता है कि बस हम वही है। जब अच्छी अच्छी चीजें हो रही होती है तो मेरे को लगता है कि हाँ हम वही हैं, हम कंवारी कंवारी कनिया ही हैं अभी। लेकिन जब अब करी कभी अम्मा डांट रही थी तो अम्मा का कहती है कि अम्मा होन ते मैं ब्याह ही गई हूं, अब तो शादी हो गई, अम्मा आप तो ऐसा मत बोले, अब तो एक बच्ची की अम्मा बन गई हूँ मैं। मैं पूछना चाहूंगा ईमान की दोगली पॉलिसी क्यों है? अगर जिम्मेदारी की बात की जाए तो कहा जाता है अभी तो मैं बच्ची हूँ, और अगर ये कहा जाए कि अभी तो आप छोटी हैं तो कहा जाता है मैं अब बच्ची नहीं रही, एक बच्ची की अम्मा हूँ। ऐसा क्यों करते हो लोग? ईमान लिखती है जी कि देयर आर स्टार्स इन द स्काई। कोई राइमिंग नहीं बनी ईमान, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है। बिस्मिल्लाह फिरदौस मेरे साथ हैं जी, और बिस्मिल्लाह फिरदौस लिखती हैं कि केबी मींस, तो केबी मींस खुर्रम बेग। जन्नत सलीम लिखती है जी वेलकम, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। अल्ले अल्ले अल्ले, ओके जी कैसे लग रहे हैं हम आपसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा लग रहा हूँ मैं? हेलो,
2: हेलो, अस्सलाम
1: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ जी। कौन बात कर रही है, कहाँ से?
2: मैं कोकाफ से भूत बात कर रही हूँ।
1: कोकाफ से भूत? कोकाफ में भूत नहीं होते, परियां होती हैं। आप अपना एड्रेस चेंज करा
2: लेंगे? परियां होती हैं वहाँ पे, भूत भी होते हैं।
1: नहीं नहीं, भूत बिल्कुल नहीं होते, जहाँ परियां होती हैं वहाँ भूत नहीं होते।
2: आप भूत वाली परी समझ ले मुझे।
1: नहीं नहीं, भूत वाली परी मैं क्यों समझूं, जब आप हैं ही नहीं तो मैं समझूं क्यों?
2: नहीं नहीं, आप भूत ही सुनते हैं।
1: आप अपने आईडी कार्ड पे एड्रेस चेंज कराएं, गलत हो गया नादरा से?
2: नहीं नहीं, नादरा से बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ।
1: तो फिर किससे गलती हो गई?
2: भूतों का नादरा दफ्तर लेता है ना।
1: अच्छा, तो गलती किसकी हो गई फिर?
2: गलती किसी की भी नहीं
1: हुई। अम्मा अब्बा की होगी, मैं पूछूं उनसे कि आपके आईडी कार्ड पे क्यों लिखवाया कोकाफ?
2: हाँ पूछे पूछे।
1: आंटी अंकल गलती आपकी है, सारी गलती आपकी है।
2: हाँ जी, सुन रहे हैं? नहीं नहीं, वहाँ पे ना जो सिस्टम है वो सारे भूतों वाला ना, इसलिए।
1: अच्छा नहीं, आंटी अंकल सुन रहे हैं?
2: कौन से वाले आंटी अंकल?
1: आपके अम्मा अब्बा?
2: मेरी मामा तो, मत मेरे बाबा तो नहीं है, लेकिन मामा सुन रही हैं।
1: अच्छा मामा सुन रही हैं अभी तो। आंटी ये फिर आपकी गलती है?
2: नहीं, वो उनकी गलती कैसी है?
1: उनकी गलती ऐसे
2: तो
1: आपका
2: वालों की गलती है ना।
1: नहीं, आपका आईडी कार्ड कुछ तो बताया होगा ना नादरा वालों को, गलती बस आप अम्मा की है, ये हम कह सकते हैं, गलती आप अम्मा की है।
2: हाँ, क्योंकि हम राजपूत है ना इसलिए।
1: अच्छा आप राजपूत है, वो आपके सुनने में गलती हुई है, वो राजभूत नहीं है, वो राजपूत है। पूत कहते हैं बेटे को।
2: हाँ जी, हम राजपूत नहीं हुए ना।
1: अच्छा, आज आप राजपूतनी है?
2: हाँ जी
1: राजपूतनी। ओके, राजपूतनी क्या नाम है आपका? रिमशा बात कर रही हैं। ओके जी, तो रिमशा कैसी हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपका शो सुन रही हूँ, बड़ा मूड फ्रेश हो गया।
1: अच्छा, तो कितने अरसे से आपने मेरा प्रोग्राम नहीं सुना?
2: आप आते हैं तो बहार आती है।
1: अरे अरे अरे, आजकल तो सावन आया हुआ है, शदीद गर्मी आई हुई है, एसी के नीचे भी ना आपको पसीने आ रहे होते
2: हैं। लेकिन लाहौर में भी बारिश हुई थी, बहुत प्यारा मौसम बन गया था।
1: तो रिमशा, ये भूत मुझे बताओ कब से झूठ बोलने लग गए हैं कि आप आते हैं तो बाहर आती है, मैं आया तो सावन आ गया।
2: नहीं नहीं, भूत जो होते हैं ना, भूतों का भी दिल करता है कि रेडियो सुनिए। देखिए मैं भूत हूँ, देखिए मैं आपको सुन रही हूँ इस टाइम, वो भी देखे। रात को भूत जो होते हैं वो इंसानों को तंग करते हैं, लेकिन इंसानों का वो शो सुन रहे हैं।
1: अच्छा ओके, चले आप भी कुछ कमी नहीं कर रही वैसे। खैर मुझे ये बताइए कि किसी जुर्म का एतराफ करना चाहें तो कर लीजिए।
2: जी जी, मैंने किया था अपनी कजिन के साथ।
1: क्या किया था?
2: वो ये किया था कि मेरी मामू की शादी थी और हम लोग वहाँ पे गए हुए थे, कोटा पास गए हुए थे, ठीक है। तो ये था कि तेल मेहंदी वाले दिन वो मुझे बड़ा चढ़ा रही थी कि रिमशा मेरा सूट तो बड़ा प्यारा है, मैंने बरात वाले दिन पहनना है, मेरी ज्वेलरी ऐसी है, मेरा जो जूता है वो ऐसे है। मुझे थोड़ी सी जेलसी थी, तो मुझे आया गुस्सा। मैंने कहा अच्छा चलो उसके साथ मैं ऐसा करती हूँ, तेल मेहंदी वाले रात का दिन हमने सूट वगैरह इसलिए किए हैं तो सब सो गए, तो मैंने इसकी ज्वेलरी, उसका सूट, उसकी जूता सब कुछ छुपा के मैंने सब कुछ उठाया और मैंने स्टोर में छुपा दिया।
1: वाह, तो फिर उसको मिला।
2: टाइम हुआ जब तैयारी श्यारी स्टार्ट हुई है, मेकअप शेकअप करने लगे, तैयारी करने लगे कि बारात आने वाली है लड़कियों की। मेरी आंटी की शादी थी और मामू की भी इकट्ठी थी, दोनों की बारात एक वो था। तो ऐसा हुआ कि जब तैयारी की टाइम आया तो उसको उसको सूट ना मिले, ना ज्वेलरी मिले, ना उसको जूता मिले। बेचारे का सारा इवेंट ऐसे गुजर गया, जब रात का टाइम हो गया फिर सारे के सारे जो है हम लोग हाल में चले गए। उस बेचारी को अकेले जो है ना घर में नानों के साथ रुकना पड़ा और उसने वीडियो कॉल पर ही खाना बेचारी ने तका और उसको ना कुछ उसे खाने को मिला। और जब वापस आए तो उसको बेचारी को इतनी भूख लगी हुई थी, खाना वगैरह लेकर आया। फिर ये हुआ कि भाई स्टोर में ये था कि चूहे थे, उसका सारा जो सूट था ना वो चूहे ने टक दिया।
1: ओह अच्छा, फिर
2: तो जब वो उसने हमारे घर में जब सारे चले गए थे, उसने काफी अपना सूट ढूंढा और स्टोर में मिल गया। जब हम वापस आए तो उसने कहा कि देखिए मेरा सूट किसी ने छुपाया और ये चूहों ने सारा टक दिया। तो मैं उस टाइम बड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन मैंने उसे आज तक नहीं बताया कि वो काम मैंने किया था। लेकिन यह है कि मैंने उसे एक नया सूट भी लेकर दिया था, उसने मुझे मुझसे पूछा भी था कि तुम मुझे ये क्यों दे रही हो। मैंने कहा बस मेरा दिल लगा कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन नहीं हूँ। कहती हाँ हाँ बहन तो हो। मैंने कहा ये तुम सूट रख लो बस।
1: अच्छा, तो
2: बिना वजह रख लो। मैंने कहा कि तुम बहनों से गिफ्ट नहीं दे सकती हो।
1: अच्छा चलो रिमशा, तो आप क्रक्स ऑफ द स्टोरी निकालते हैं। इसके दो क्रक्स ऑफ द स्टोरी निकले हैं। एक तो ये निकला है कि कभी भी आपके साथ कोई अच्छाई कर रहा हो और खाम खाम में कर रहा हो तो आप कभी भी ये ना सोचें, उसके पीछे जरूर सोचें कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कांड जरूर किया मेरे साथ इसने, तब ये अच्छाई कर रहा है। एक तो ये क्रक्स निकल गया। दूसरा ये क्रक्स निकल गया कि गलती किसकी है?
2: गलती मेरी है फिर तो। नहीं लेकिन ना वो हर टाइम
1: नहीं, मैं अभी भी कहूंगा
2: मेरे साथ काफी कुछ ऐसा किया। लेकिन मैंने उस टाइम मजाक में सूट छुपाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कांट हो जाएगा, बेचारे चूहे जो है उसका सूट ही खा जाएंगे।
1: अच्छा रिमशा, मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ, गलती आंटी की है।
2: आंटी की? हाँ। वो कैसे?
1: बस ये आपने सोचना है, गलती आंटी की है, ठीक है।
2: और आप अभी ख्वाबों के बारे में पूछ रहे थे।
1: नहीं बस एक ही बात पूछनी है ना आपसे, वो किसी और से पूछूंगा ना।
2: नहीं
1: अब बस रिमशा हो गया ना, एक चीज आपसे पूछनी है ना अब, इतनी लंबी बात सिर्फ आपसे ही करूंगा।
2: अल्लाह छोटी सी तो बात है, आप अपना ख्वाब बताऊंगी कि मेरा भी ख्वाब सच्चा हुआ? मैं
1: मैं आज गलती पे इत्तेफाक करूंगा कि भाई गलती किसकी है, आप इस पे सोचें गलती किसकी है, नेक्स्ट टाइम पे आपसे ख्वाब पूछूंगा, ठीक है? ओके रिमशा, थैंक यू फॉर कॉलिंग रिमशा। रिमशा लाहौर से आती है जी।

0: मोहम्मद अफजाल मेरे साथ है जी फेसबुक पे, कहते हैं डीजे के बी अल्लाह ब्लेस यू और टेल मी व्हाट यू वांट टू रिवील। हाय दिल के अफराज दिल के हैं गुबार इतने। रात बीत जाए ये गुबार खत्म ना हो। माजी भी लिखती हैं हर्ड योर वॉइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सो स्वीट, थैंक यू माजी भी। मतीन अहमद सत्ती हैं मेरे साथ और कहते हैं प्यारे भाई मैं जी करा। माजी भी लिखती हैं आपके हैंड बैंड ग्लासेस सब बहुत सूट कर रहा है आपको, थैंक यू माजी भी। ऐसा बिल्कुल नहीं है जो आपने लिखा है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। ओके जी कॉलर लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम के भी आपसे मुखातिब है जी, कौन साहब या साहिबा? जी साहिबा क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह साजिदा कैसी हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक। साजिदा सोई नहीं है आप अभी तक, क्यों वजह?
1: नहीं तो मैं आपके साथ शो सुन के सोऊंगी।
0: ओके तो आप डेली रात को लेट सोती हैं या आज ही आपने लेट सोना है?
1: नहीं मैं जो मुझे आज अच्छी लगते हैं ना मैं उनको सुन के सोती हूं।
0: अरे वाह तो हम आपके अच्छे वाले आरजेज की लिस्ट में।
1: यस।
0: ओके तो और कौन कौन से अच्छे आरजेज हैं आपके?
1: है वसीम भाई
0: हैं। ओके
1: ओके और ज्ञान जो मैं।
0: ओके
1: और हसनैन रजा
0: अच्छे लगते हैं आपको?
1: रात के ये है ना आरजे।
0: ओके और दिन वाले कौन से?
1: शाम को भी रात को सुन के सही, वो भी अच्छी आरजे।
0: हाँ वरना मैंने जिशान को शिकायत लगानी थी कि भाई ये जो साजिदा है ना ये आपको नहीं सुनते।
1: नहीं वो भी अच्छी आरजे।
0: ओके तो दिन वाले कौन से अच्छे?
1: दिन भी मूड के हिसाब से जो अच्छे होते हैं उनको सुनती हूँ, नहीं तो नहीं सुनती।
0: तो कितना प्रोग्राम आप दिन में कितना टाइम रेडियो सुन लेते हैं आप? कितना टाइम आप रेडियो सुनती हैं डेली?
1: बस टूनिया वो यानि कि सुनती रहती जो अच्छा और जो सुन लेते ना दिल हो तो फिर बंद कर देती है।
0: तो आपने हैंड फ्री वाला रेडियो रखा हुआ है या आप फोन के अंदर सुनती हैं?
1: हैंड फ्री वाला
0: मतलब तो फोन के अंदर ही होता है ना हैंड फ्री।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: हाँ अच्छा तो बताएं जी ख्वाब जो है वो कभी आपने देखा हो और वो सच हो गया हो साजिदा, कोई ऐसा ख्वाब जिंदगी में?
1: हाँ जी ख्वाब तो सच हो ही जाते हैं।
0: ओके
1: तो मैं भी एक बताना है अपना। जैसे आप पूछ रहे अपने को बताएं कि क्या हुआ आपके साथ तो वाकया ऐसा बताओ।
0: अच्छा वाकया बताएंगी, एक ही बात बतानी है या ख्वाब बताना है या वाकया? आप एक बात बतानी है आपने, आप खुद फैसला कर लें आप क्या बताएंगी।
1: चलो वाकया सुना देती
0: हूं। चलो वाकया सुना दो।
1: हम ना शादी पे गए तो शादी।
0: अच्छा, आपके पास भी शादी वाला किस्सा है?
1: हमें ना दो फैमिली एक कमरे में दी थी। हेलो हेलो
0: जी जी मैं सुन रहा हूँ साजिदा।
1: अच्छा शादी में ना हमें ना दो फैमिलियां ना एक कमरे में दी हुई थी रुकने के लिए।
0: ओके।
1: अब ना मैंने ना अपना मोबाइल ना चार्जिंग पे लगाया और नया मोबाइल लिया था जरा एक महीना हुआ था तो ना चार्जिंग पे लगाया जैसे हम सुबह उठे तो मैंने चार्जिंग पे लगा दी, मैंने कहा शादी के बारात वगैरह है तो मेरा चार्जिंग हो जाए। अब जो दूसरी फैमिली थी ना उसमें से ना एक लड़के ने ना मेरा मोबाइल पकड़ लिया। अब वो जैसे सब तैयार हो रहे हैं मेहमान वगैरह भी आ गए तो मोबाइल में सबको पूछी जा मेरा मोबाइल किसने लिया, तो उधर ना पता ही नहीं चल रहा था किसने लिया। जिसके घर हम ठहरे थे ना तो वो उधर से ना मेरे घर वाले पूछने लगे इधर ना मोबाइल लगाया था हमने, तो वो कहते हमें तो अब नहीं पता बहाल पूछते हैं। वो एंड हो गया, शादी भी एंड हो गई। वो फिर ना वो कहते शादी एंड हो जाए फिर हम बात करेंगे। वो फिर जब शादी खत्म हो गई तो उसको उन्होंने पूछा जो हमारे पास साथ एक फैमिली थी ना कमरे में उनसे सख्ती से पूछा तो वो ना यानी कि वो चले गए अपने घर, उन्होंने नहीं बताया। बाद में ना हम जब अपने घर आए ना पीछे से फोन आया आपका ना मोबाइल मिल गया तो आपके माना था तो ले जाओ। फिर दोबारा गए दो तीन हफ्ते बाद तो वो उसने ना मोबाइल ना छत के ऊपर लकड़ियां थी लकड़ियों के ऊपर अंदर ना बंद करके ना वो तो छुपा दिया था मैं ले लो, लेकिन वो मिल गया उन्होंने सख्ती की जिसने भी साजिदा का मोबाइल लिया था दे दो।
0: अच्छा
1: वो फिर मिल गया था।
0: अरे
1: और ये मुझे याद जब भी कोई शादी आती है ना मुझे अपना, मैं सबसे पहले मोबाइल का संभालती रहती हूँ, मेरा मोबाइल ना गुम हो जाए।
0: हाँ, शादियों में अक्सर जो ना मोबाइल आपके गायब हो जाते हैं, क्योंकि कैमरास तो इनसाइड द विसिनिटी ऑफ योर हाउस होते नहीं है, तो वो फिर लोग उसका फायदा उठाते हैं ना।
1: नहीं, फिर भी मैं एहतियात करती थी, किसी ने लिया भी हो ना फौरन कहते थे मेरा मोबाइल दे दो, गुम ना हो जाए। शादी में तो फिर ना मैं एहतियात बहुत ज्यादा करती
0: हूँ। ओके,
1: और आपका शो जबरदस्त और बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, और आपने बाकी 4 चांद लगा
0: दिया। अरे वाह, थैंक यू साजदा, बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ।
1: जहाँ तक मेरी और आपकी आवाज आ रही, सबको अस्सलाम वालेकुम, आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह
0: हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम।
2: खामोशी तेरी बेसबब तो नहीं है।
0: अरे जो खामोशी से सुन रहे हो ना, खामोशी तुम्हारी बेसबब तो नहीं है।
2: सबब तो नहीं है,
0: कहीं जहन पे गिरफ्त है, कहीं जुबान पर कुफल है, खामोशी तुम्हारी बेसबब तो नहीं है।
2: सुना तो रही है, बता तो रही है, अखियों की लाली।
0: अगर मैं बता दूं ना तुम्हें, तो तोड़ दो जहन के ये जाले,
2: बता तो रही है,
0: खोल दो ये दिल के कुफल, कर दो जुबां को आजाद, कह डालो वो आज जो तुम छुपा के बैठे हो सालों से।
2: बेवजह फेरे,
0: बस बेवजह से कह दो, हर बात की कोई वजह थोड़ी ही होती है।

0: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफा फिर खुश आमदीद। मनोरम इंटरनेशनल आप सुन रहे हैं जी, के भी आपके साथ है। 12:42 है, 4 जुलाई है, 2026 है, और मेरे साथ ये मौजूद हैं। कौन मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान।
0: वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी मोहतरमा, क्या हाल है आपके?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक जी। ये कैसे हो गया आज? आज आप कहाँ से आटप की?
1: एक्चुअली मैं पिछले कुछ शो से ट्राई कर रही थी, ऑन फ्राइडे और सैटरडे में ट्यूनिंग कर रही थी, लेकिन आप नहीं थे। आज मैंने ट्यूनिंग किया तो आप मौजूद हैं, सो मैंने कॉल कर ली।
0: ओके, सो कैसी जिंदगानी गुजर रही है अबीर फातिमा?
1: अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: कहाँ गायब हैं आप? आपको दिखती नहीं है, कोई आपका अता पता नहीं है, कभी ना प्रोग्राम सुनती हैं, गायब हैं आप।
1: बच्चे से शादी हुई है तो रेडियो से थोड़ा से
0: अरे वाह, ये जो शादियां
1: दूर हो
0: होती हैं
1: गए।
0: ना,
1: बिल्कुल
0: आ हा, सारे शौक मार देती हैं ना।
1: ऐसी बात है,
0: ओके, तो कैसे हैं आपके मियाँ हजूर?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है।
0: ओके, तो वो भी रेडियो सुनते हैं?
1: इस वक्त मेरे पास ही है तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक शो में कॉल कर लूँ। एक्चुअली मैं इनको बड़ा एडवाइस दिया करती थी, किसी टाइम पे बहुत सुनना करती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि बाय नोट आप कॉल करो।
0: ओके, तो ये बस भाई हमारे को भी लगा दो रेडियो के ऊपर, बस तो दोनों मिलके बैठ के मियाँ बीवी सुना करो। आप दोनों में खूब झगड़े कराऊंगा मैं, ठीक
1: अच्छी बात है उसकी।
0: है? ओके, तो अबीर फिर ये बताओ मुझे कि ख्वाब देखती हो?
1: ख्वाब जो होते हैं वो मैं तो समझती हूँ सच नहीं होते, ख्वाबों की दुनिया में रहना भी नहीं चाहिए। सोते
0: नहीं, खुली आंखों के ख्वाबों की बात नहीं कर रहा मैं आपको बंद आंखों के ख्वाबों की
1: हुए
0: बात कर रहा हूँ। हाँ,
1: ख्वाब तो आते हैं और सम टाइम्स ठीक भी हो जाते हैं,
0: कभी कोई
1: लेकिन
0: ऐसा
1: मोस्टली
0: ख्वाब
1: नहीं
0: जो
1: भी
0: आपने
1: होते।
0: देखा हो और वो सच निकला हो?
1: मेरी रिसेंटली मेरी कजन का बेटा हुआ है और मैंने देखा था कि उसका बेटा होता है और मैंने उनको बताया भी था उसका बेटा ही हुआ है।
0: ओके, तो आपने कितना अरसा पहले वो ख्वाब देखा और कितने अरसे बाद बेटा हुआ?
1: मतलब कि कुछ टाइम के बाद वो हो गया था।
0: ओके, चलें आपसे दूसरा सवाल भी पूछ लेते हैं। वो ये पूछते हैं आपसे कि ये बताइए कि आपने जिंदगी में कोई ऐसा जुर्म किया हो जिसका आप आज एतराफ करना चाहती हो?
1: इतराज़ क्या, मुझे अभी भी समटाइम्स कभी कभार रिग्रेट होते हैं उस बात पे। व्हेन आई वाज वेरी लिटिल आई वाज स्कूल गोइंग, तो हमारे ना स्कूल जाते रास्ते में खोखे आते थे जिसमें डिफरेंट चीजें मिला करती थी,
0: हाँ,
1: और जो रोज की पॉकेट मनी मिला करती थी उससे तो जो चीज खरीदनी है खरीदनी है। एक आध दफा ऐसा हुआ कि मैंने एक्स्ट्रा चीज उठा ली थी, इसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी करती हूँ। हाँ
0: ओके, पैसे कम दिए और चीजें ज्यादा उठा ली? हाँ,
1: जी।
0: दो चीजें आपने दुपट्टे के नीचे रख ली और दो सामने
1: नहीं, दुपट्टा तो उस टाइम करती नहीं थी, बहुत छोटी।
0: पोनी के नीचे छुपा ली होंगी आपने फिर।
1: हाँ लेकिन मुझे इस बात पे रिग्रेट होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: कोई बात नहीं, बचपन की बातें हैं अबीर, हो जाता है।
1: और आप खैरियत से हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ अबीर, लेकिन आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आपको जाने नहीं देंगे। इतने अरसे बाद आप आई हैं तो कुछ सुना के जाएंगी।
1: मैं आपको सच बात बताऊं तो सिंगिंग से तो बहुत दूर हो चुकी हूँ,
0: हम आपको हम आपको
1: लेकिन
0: सिंगिंग करने का नहीं बोल रहे हैं, हम आपको गाने का बोल रहे हैं, कुछ सुना के जाए।
1: ठीक है मैं आपको सुनाती हूँ थोड़ा सा
0: मान
1: गाना।
0: गई भाई जी, सुनाए।
1: प्यार नल ना सही वो

0: हाँ, वाह जी वाह, वाह जी वाह, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अबीर आपको सुना, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अपना ख्याल रखिएगा,
1: थैंक यू सो मच,
0: बाय
1: थैंक यू आपको.
0: बाय. अबीर ये आपके हबी के नाम करते हैं और आपके नाम करते हैं.

0: हाँ जी, फेसबुक पे मेरे साथ है जी मलिक नसीम आवान, और कहते हैं जी वेरी नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। और मलिक वसीम लिखते हैं कि मैं जी मंडा सियाल कोटी से हूँ जी। मंडा सियाल कोटी, अच्छा मुंडा सियाल कोटी। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अल्लाह का खौफ कर भाई। लिख देते कि मैं सियाल कोटी हूँ। मंडा सियाल कोटी क्या होता है? मुंडा सियाल कोटी होता है, और मुंडा के अंदर एम यू लिखा जाता है, ए नहीं लिखा जाता। कहते हैं जी कि सेंड्स यू एंड योर टीम एंड दोज हु लिसन टू यू। क्या सेंड कर रहे हैं? अच्छा लिखते हैं, मलिक वसीम अवान मंडा सियालकोटी सेंड्स यू एंड योर टीम एंड दोज हु लिसन टू यू। हाँ फिर मेरे साथ वही हो गया वसीम। यार ये क्यों मेरी ट्रांसलेशन ऑन हो जाती है? लिखते हैं जी मलिक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी, उर्दू में उन्होंने लिखा है। अच्छा ये मेरी गलती है, मुंडा सियालकोटी, रियली सॉरी यार। कहते हैं आपको और आपकी टीम को और आपको सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम मलिक वसीम। और कहते हैं जी पाकिस्तान जिंदाबाद, सियालकोट जिंदाबाद, थैंक यू सो मच। और कहते हैं आरजे असलान इकबाल साहब सियालकोट से हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। उनके लिए बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपकी और आपकी फैमिली के लिए। कर सरकार मेरा दिलदार। आतिफ अली हैं जी, सलाम कह रहे हैं, और कह रहे हैं जी कि वेरी नाइस प्रोग्राम, लिसनिंग यू फ्रॉम यूएई अबू धाबी। थैंक यू आतिफ फॉर लिसनिंग मी। लोग जी कॉलर लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मोहतरमा, कैसी हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक।
0: कौन साहब है?
1: कौन साहब है?
0: लाहौर से मिशाल आई है। अरे लोगों सुनो,
1: नहीं,
0: मिशाल
1: नहीं, बोल रही हूं। नहीं, बोल रही हूं।
0: मिशाल क्या हाल है?
1: सुल्ताना।
0: दौलताना बोल रही है?
1: नहीं दौलताना।
0: अच्छा मिशाल कैसी हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: कैसे गुजर रहे हैं आपके शब रोज?
1: बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह।
0: पहले तो आप बताएं कि आप एक महीना कहाँ गायब थी, आप आती क्यों नहीं रही है मेरे प्रोग्राम में?
1: मैं एक महीना क्योंकि यहाँ नहीं थी। हाँ। और इस दफा बहुत अच्छे बाद मैंने जो ईद है वो अपने बहुत सारे प्यारों के साथ की।
0: अरे वाह,
1: और बहुत मुझे अच्छा लगा। और अपने बुजुर्गो के साथ, अपने बड़ों के साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह
0: किसी और को भी ये कहने का मौका आपने दिया कि वो कह सके कि हमने अपने बुजुर्गों के साथ ईद की है?
1: नहीं, औरों को मैंने मौके दिया कि उन्होंने कहा हमने अपने बच्चों के साथ ईद की है।
0: अच्छा अच्छा ओके, तो आपने उनको कहा कि आप अपने बच्चों के साथ ईद करें। मैंने इस दफा बुजुर्गों के साथ करनी है।
1: नहीं, मैंने अपने बुजुर्ग

0: बाद बहुत बचपन की ईद याद आई और बड़ा अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह।
1: तो फिर कितने अरसे बाद फिर आप वापस आई हैं अपने?
0: फिर मैं वापस अल्हम्दुलिल्लाह आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह आकर फिर बहुत अच्छा लगा और बहुत शुक्र अदा किया उस्ताद का कि बहुत मुझे सुकून मिला वापस अपनी इस गर्म और लेकिन एहसास हुआ सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपको एक अपनी जगह पर आकर जो आपको सुकून मिलता है
1: चले ठीक हो गया जी। आप सुकून जरूर लें, सुकून जो है वो आपको चाहिए भी और सुकून होना भी चाहिए जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में सुकून छोड़ें भी,
0: है ना? ऐसे ही आप ख्वाब और वाकयात सुन रहे ना करें।
1: हाँ
0: आप कभी कभी कोई दुआ नहीं दिए तो मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब जब भी कोई ख्वाब देखा या ख्वाब भी जो सोचा वही वही हुआ।
1: अच्छा पक्की बात है?
0: बिल्कुल पक्की बात है।
1: मिशाल फिर मेरे बारे में आज क्या ख्वाब देखने वाली हो?
0: किसके बारे में?
1: मेरे बारे में क्या ख्वाब देखने आज?
0: वो दोनों खबरें देखने छोड़ दिए।
1: अच्छा मतलब वो वाले भाई देख, ये देखो ना किसी की तरक्की चाहते ही नहीं है लोग। अगर
0: जिनको पहले अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तरक्की मिल रही हो और क्या चाहिए?
1: नहीं मैंने मैंने थोड़े से और कीड़े डलवाने हैं ना, मैंने थोड़ी और तरक्की चाहिए मुझे।
0: अल्लाह अकबर। सही है।
1: हाँ तो आज क्या क्या क्या ख्वाब, लेट्स सपोज अगर आपको वो ख्वाब देखने का मौका मिले और आप मेरी जिंदगी के बारे में कुछ ख्वाब देखें और वो सच साबित हो जाए तो आप क्या चाहेंगी कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्या हो, आप क्या चाहेंगी?
0: मैं बिल्कुल ऐसा चाहूंगी कि जैसा जैसा ये प्रोग्राम हम सुनते हैं और उसके बाद बहुत कुछ समझने को बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है तो फिर बहुत सारी दुआएं भी निकल रही होती है और यकीन करो बहुत सारी ऐसी बातें जो कभी कभी आप बहुत सारे मुश्किलों में बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है उनका समय नहीं आ रहा था कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए वो कभी कभी पता क्या होता है आपके प्रोग्राम सुनते से समझ आ जाती है कि ओ यहाँ तो ये ऐसा होना था और सीरियसली बहुत अच्छा ऐसा हो जाता है और तो फिर क्यों दुआएं निकलेगी कि बहुत अल्लाह ताला बहुत सारी तरक्कियां और बहुत सारी
1: ये तो सारे दुआ करते हैं ना तरक्की और कामयाबी की। एक स्पेसिफिक अच्छा नहीं मिशाल अगर स्पेसिफिक अगर आप सोचेंगे यार खुरम की जिंदगी में ना ये हो जाए तो वो आप क्या ख्वाब देखना चाहेंगे, ये सवाल है ना मेरा कैटेगोरी के लिए सवाल है कि एक आध कोई चीज़
0: ये हो जाए तो बहुत सारा
1: सुकून हो। अरे वाह कमाल।
0: ये सबसे ज्यादा आपको सारा कुछ मिल रहा होता है लेकिन जो सुकून है वो ना आप किसी से ले सकते हो ना कोई आपको दे सकता है वो आपको उस साथ से ही मिलना होता है।
1: वैसे मैं आपको एक पते की बात बताऊं
0: जी,
1: जिंदगी में कभी भी सुकून नहीं होना चाहिए, मैं इस बात का कायल हूं। हाँ अगर आपकी जिंदगी में सुकून आ जाता है ना, ठहराव आ जाता है, साकेत हो जाती है आपकी जिंदगी, तो फिर आप जो है ना वो ठहरा हुआ पानी बदबू देना शुरू कर देता है। ठीक है तो मैं इस बात का कायल हूँ कि आपकी जिंदगी में हर वक्त कोई ना कोई चैलेंज होना चाहिए और उस चैलेंज में ही आपको सुकून होना चाहिए, ठीक है ना? तो मेरे लिए मैं तो चाहूंगा कि हाँ तो फिर आप सुकून की दुआ कर रही हैं तो सुकून की दुआ, सुकून की दुआ कर रही हैं तो इसका मतलब आप ये चाह रही हैं कि मैं बस साकेत हो जाऊँ, साकेत तो इंसान कब्र में ही होता है। देखो मिशाल कितना बुरा सोचती हो मेरे बारे में। चलो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मिशाल, ख्याल रखो अपना, अल्लाह हाफिज़। मिशाल आई है जी, मेरी रेगुलर कॉलर हैं लेकिन काफी अरसे से गायब थी। थैंक यू सो मच मिशाल फॉर बीइंग विद मी। लेट्स टेक द अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, केबी इज विद यू, हु आर विद मी?
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी। हेलो हेलो हेलो, म्यूट हो गया तुम्हारा फोन?
2: नहीं आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं अभी
1: आ रही है आपकी आवाज।
2: अच्छा क्या हाल है? ठीक है
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं मोहतरमा?
2: मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है। मैंने कहा आज तो मुझे लगता है खुरम भाई ने ना तो पहले तो अपनी बातें सुनानी है, फिर जो काला रहेगा उनकी लंबी लंबी सुनी, नहीं कि भाई पीछे कोई और भी क्या था काला
1: अच्छा
2: बात करना चाह रहा हूँ।
1: मैं या फिर अपनी बातें करूंगा या कॉलर की बातें करूंगा, जिन बूतों की थोड़ी करूंगा।
2: खुरम भाई मेरी बात
1: या
2: सुनो
1: मैं
2: भाई, आपको नहीं पता भाई हम बेचारे भी कॉल करने के लाइन में लगे होते हैं।
1: अच्छा तो बस आपकी बात सुननी थी, फिर आप ये बात करें ना कि मेरी बात सुननी थी। हैं
2: जो आप बता रहे थे ना, अच्छा मुझे एक मशवरा दे रहा कि अगर आपका शोर हो पहुंचे
1: पहले
2: और
1: आप
2: आपकी
1: मुझे ये
2: भीड़
1: बताएं आपका
2: सारी
1: नाम क्या है,
2: घर
1: पहले
2: में हो
1: नाम
2: तो
1: तो बताएं
2: क्या
1: ना।
2: करना चाहिए, कोई दुआ होगी वजीफा बताएगी हमें ना, हम एक हो जाए चली जो मैं वापस अपने शोर के पास। अच्छा
1: पहले तो मोहतरमा अपना नाम बताएं, क्या नाम आपका? आमना। ओके तो आमना अब क्या पूछना चाह रही हैं कि आप अपने शोहर से अलग हैं और आप मुझसे वजीफा पूछना चाहती हैं कि मैं आपको कौन सा वजीफा बताऊं कि आप अपने शोहर के पास चली जाएं।
2: हाँ ना करो भाई, आप ऐसे भी सारी शादीशुदा को मशवरे देते, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी अपने भाई से ये पूछूं,
1: बड़ा
2: मुझे भी
1: गौर
2: कुछ
1: था
2: पता चल
1: आमना, फिर
2: जाए।
1: सुनना, मैं वजीफा दे रहा हूँ, इस पर अमल भी करना है, और ये सुबह शाम आपने पानी के साथ लेना भी है।
2: ठीक है वजीफा तो मैं करूँगी, पर आपने लेजी दुआ भी कर दी है।
1: हाँ दुआ मैं दवा भी जरूर करूंगा, और ये जो दवा है ना, ये जो वजीफा है इसके अंदर दवा भी है, ठीक है।
2: अच्छा,
1: हाँ वजीफा
2: और
1: ये
2: घर
1: है,
2: पर बताए घर में सब ठीक ठाक है, आप ठीक
1: और
2: है?
1: मैं
2: इतने से बाद मेरी बात हुई आपसे,
1: और वजीफा ले लो आमना, वजीफा लेना नहीं लेना।
2: लेना
1: हाँ वजीफे होते हैं दो, एक वजीफा वो होता है कि जो आपको
2: हाँ।
1: स्टाइपेंड दिया जाता है, कि मतलब ये वजीफा है जी आपको अपना महीने का, कि आपका ये खर्चा पानी है, उसको भी वजीफा कहा जाता है। एक वजीफा ये होता है कि जो आप पूछ रही है ना, तो वो वजीफा आपको देने लगा हूँ। वो वजीफा ये है कि आप ना पानी के साथ लेना है आपने, सुबह शाम दोपहर तीन टाइम, ठीक है।
2: अच्छा,
1: हाँ आपने क्या करना है, पहले तो अपने शोहर से सॉरी करना है, ठीक है, और दूसरा आपने क्या करना है कि फिर आपने सुबह शाम दोपहर खामोश रहना है, चुप रहना है। हाँ
2: और
1: ये वजीफा है बस।
2: बस
1: हाँ बड़ा सख्त है लेकिन ये असर बड़ा करेगा।
2: नहीं खुरम भाई आप कितने ज्यादा, आप मेरे भाई है या मेरे शोर के भाई है, मैं आपको मेरी तरफ रह चाहिए भाई, आपको ये कहना चाहिए मैं सॉरी क्यों करूँ, ना मेरी गलती है और चुप भी मैं रहूँ। वाह वाह माशाल्लाह,
1: मैंने आपको वजीफा बताया, अब आप अमल करें ना करें आपके आपके ऊपर वो डिपेंड करता है, वजीफा यही है बस।
2: अच्छा जी वजीफा ही कहा
1: हाँ
2: शुरू देखे, सुबह मैंने पहले सॉरी बोले फिर
1: हाँ
2: क्या करना,
1: और उसके बाद आपने खामोश रहना है।
2: हाँ और पानी के साथ क्या करना था?
1: ये सुबह शाम अब आपको जब गुस्सा आएगा ना तो आपने पानी पीना है, तो पानी पीने से
2: अच्छा
1: गुस्सा खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। आपने आमना ये आजमा लेना है कि आपका शोहर तंग हो जाएगा, कहेगा भाई तू बोलती क्यों नहीं है, अरे तू रिएक्शन क्यों नहीं देती, अरे मैं ये कह रहा हूं तू ऐसा क्यों नहीं करती, तो वो खुद ही कहेगा मेरी बीवी बहुत अच्छी है, तो आपसे बहुत अच्छा हो जाएगा।
2: अच्छा चलिए फिर भाई, आपकी बातें तो हम मानते ही आए, आप कई टाइम से एफएम सुन रहे हैं, क्योंकि
1: यार
2: आपकी बातें
1: आमना
2: उल्टी बार रही, जरा आप मुझे गाना अगर आप अपनी आवाज में सुना दे ना, मैं उल्टी उल्टी आवाज में फिर और ही खुश हो जाऊंगी।
1: यार आमना आप गाने सुनने आई है मेरे से वजीफे लेने आई, पहले एक बात पे फैसला कर लो।
2: अरे खुरम भाई अब इतनी मुश्किल से कहा लगी है, तो फिर दोनों का निकाल जो ना, वजीफा भी पूछ ली, वजीफा तो हमने बहुत सारा बताया,
1: नहीं
2: तो
1: देखो आप
2: जो
1: जब
2: सख्त वजीफा बताया था उसके बदले मुझे गाना सुनाए।
1: देखो ऐसा होता है ना, जब आप डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हैं ना, तो एक फीस के अंदर एक ही दफा चेकअप होता है, एक फीस के अंदर एक ही बीमारी चेकअप की जाती है। वरना फिर ये होता है जब आप डॉक्टर की फीस पूरी नहीं लेके आते ना, फिर ऐसा होता है। ओके जी नेक्स्ट कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अरे अरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के कोई मेल हजरात भी हैं, आज तो रेगुलर खवातीन की कॉलें कनेक्ट हो रही हैं। कैसे हैं आप सर?
3: जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, आप खैरियत से हैं? ये बताइए कि एक महीना जो आप रहे हैं खैरियत से रहे ना?
1: बिल्कुल अल्लाह का बहुत करम, बहुत बहुत अच्छा, और मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, और उस चेंज के हवाले से मैं थोड़ा सा बिजी था, और दैट चेंज इज़ वेरी वेरी मच फ्रूटफुल फॉर मी, बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मजीद आगा अच्छा अच्छा करे, बेहतर करे।
3: अल्लाह ताला आपको कामयाब करे,
1: आमीन।
3: और जो आपने जो भी आपके जहन में था वो आपने किया, और उस पर अल्लाह ताला आपको कामयाब किया,
1: आमीन आमीन शुमा आमीन, थैंक यू।
3: तो आप बहुत सी आपने बातें की, अब मेरे जहन में मुख्तलिफ, लेकिन ये रिसेंटली जो आपने अभी बात की थी ना
1: जी,
3: कि कोई चाहे हसीन चेहरा हो, चाहे कोई इमारत हो, चाहे कोई कोई परिंदा हो
1: जी,
3: तो उसको एक झलक देखने के बाद फिर जी चाहता है कि दोबारा देखा जाए, एक झलक, क्योंकि वो एक झलक ही होती है ना
1: जी,
3: तो इसलिए तशनगी रहती है कि भाई और हो जाती है, ऐसे हो जाता है। जैसे आपने एक लिबास पहना है, पहले दिन जब आप पहनेंगे तो उस लिबास को आप बड़ा पसंद करेंगे, आप समझे कि मैं बहुत, दूसरे दिन तीसरे दिन हत्या के एक वीक अगर आपने उसके इस्तेमाल कर लिया तो बस आपकी वो पसंदीदगी खत्म हो जाएगी।
1: एग्रीड एग्रीड 100% एग्रीड
3: जी
1: 100% एग्रीड।
3: और आज मैं आपको कुछ कुछ सुनाऊंगा आपको, करी करी नहीं सुनाऊंगा
1: जी सर सुनाइए।
3: मेरे दिल की तार बज बार बार, रहूं बेकरार, आजा करूं इंतजार, गए नैन हार, आजा मेरे दिल की तार बजे बार बार। और दूसरा ये कहूंगा कि हो सुन ले ओ जाने वफा, तू है दुनिया मेरी है मेरी जिंदगी, कभी होंगे ना हम तुम जुदा, हो सुन ले ओ जाने वफा जी।
1: अरे कमाल सर कमाल, आज तो कहते हैं कि दिल का मौसम बहुत हसीन है
3: आपने।
1: आज तो आपने कुछ और रंग दिखाया, दिल का मौसम बड़ा हसीन है आज मुझे लगता
3: है। जी जी बेशक मौसम भी अच्छा है, आपको पता है आज कल मौसम तो बहुत ही हसीन था, लेकिन यह है कि जो शदीद गर्मी पड़ रही थी वो भी आज उस तरह की गर्मी नहीं है, आज शाम भी थोड़ा सा मौसम प्यारा हो गया।
1: जी चलें जी, ऐसे ही बहारें रहें आपके दिल के मौसम के ऊपर। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।
3: नजीर क्यानी बोल रहा हूँ, बता दो ना, यहाँ बोले आप वो अमीर गुल बोल रहे हैं।
1: जी जी नजीर क्यानी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
3: बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू जी, हाफिज। ओके जी, ये वाला गाना सुनाते हैं आपको, फिर वापस आते हैं, मेरे साथ रहिएगा, आरजे के भी मुझे बुलाते हैं।

0: ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफा फिर खुश आमदीद। 1:27 हैं, आज की भी आपके साथ हैं। आर आज 4 जुलाई है 2026। इतनी ज्यादा फोन कॉल्स हैं आज, इतनी ज्यादा फोन कॉल्स हैं कि मैं खुश हो गया। चलो जी, कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खुर्रम भाई, वेलकम, खुश आमदीद, कैसे हैं?
0: थैंक यू जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए, आप कैसे हैं मोहतरम?
1: अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। बड़ी बात है, इतनी देर के बाद चांद नजर आया, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तो आपको गले मिलने को जी चाह रहा है।
0: अरे अरे अरे अरे, आजा फिर, लग जा जफी, आजा पाजा पाजा।
1: नहीं नहीं यार, थोड़ा आहिस्ता, क्योंकि मैं बीमार हूँ।
0: अच्छा, जोर नहीं लगाना ज्यादा।
1: हाँ बिल्कुल है।
0: तो बताओ मेरे भाई, कैसे मिजाज हैं?
1: जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आज ना खुर्रम भाई, ऐसे ही ना मुझे आपकी याद आई।
0: अच्छा, ऐसे ही याद है।
1: याद आया कि जुमा था, मेरा रेडियो लेकिन खराब था, तो मेरे मोबाइल पे रेडियो नहीं आता। मैंने भाई का रेडियो मतलब ना चुरा के लाया, मैंने सोचा कि उस पे लगाता हूँ अगर आया हो तो। मैंने सोचा कि रेडियो भी लेने जा रहा हूँ, देन चेक भाई भी ना आया हो। तो भाई से भी डांट पड़ी, भाई कहता लगता है जनाब का आज पैकेज नहीं है।
0: अच्छा,
1: तो जो ही रेडियो ट्यून किया तो वाकई गाना लगा हुआ। मैंने कहा यार वो तो नहीं आए,
0: फिर
1: लेकिन आपकी आवाज सुनी जब वो साइदा आपी की कॉल लगी, तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं अल्लाह किया तो आज आ गया भाई।
0: अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया, आप इतने इश्तियाक से सुनते हैं।
1: तो भाई ख्वाब की बात कर रहे हैं, मैं तो जो ख्वाब देखता हूँ ना, अक्सर मेरी ना ख्वाब उल्टी होती है, मतलब जो देखता हूँ ना वो उल्टा हो जाता है। जिंदगी में मेरे ना तकरीबन 1-2 ख्वाब सच्चे हुए थे, लेकिन एक आपको बताता हूँ।
0: अच्छा,
1: एक शादी थी, तो उस वक्त ना फोन रबते मतलब नहीं होते थे ज्यादा। तो मैंने एक बंदे का सोचा, मैंने कहा कि शायद वो शादी में आए, लेकिन रात जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि वाकई वो शादी में मौजूद है।
0: अच्छा,
1: तो जब मैं शादी पे गया तो उसने मुझे कहा ठीक हो, अचानक मुझे झटका सा लगा, यार ये तो वाकई वो ख्वाब जो है ना, मतलब जिंदगी में मेरा जो सच हुआ था, मतलब वो मुझे अभी तक नहीं भूलता कि कुछ ख्वाब वाकई होते हैं, जो बंदा देखता है वो सच हो जाते हैं।
0: चलो, तो आपने जिसका सोचा था फिर वो आपको नजर आ गया।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: चलो ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए। ठीक है, ख्याल रखें अपना, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा।

0: ओके जनाब, 051111001 इज द डायलिंग नंबर और के बी आपके साथ है। 1:30 हुए चाहते हैं, 1:30 बज गया ने जी, और कॉलर मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा पता, आप लाइन लगा के खड़े थे इससे पहले सारी लड़कियां और अब सारे लड़के।
1: नहीं, मेरी बात सुन रहा हूँ हर भाई, एक बात सुनाएं।
0: सुनाए, पूछे।
1: थोड़ी देर बाद मेरी कॉल कनेक्ट हो गई है, पिक भी हुई है, आगे से कोई बोल नहीं रहा था, इसकी क्या वजह है?
0: अच्छा, पहले कॉल कनेक्ट हुई है और आगे से कोई बोल नहीं रहा था।
1: हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या वजह है यार? तो आपको तो मजाक नहीं करे।
0: नहीं नहीं, मुझे नहीं आइडिया इस बारे में, मैं अभी देखता हूँ कि क्या मसला है। आपकी कॉल कौन उठाता है? कौन गुस्ताख है जो आपकी कॉल उठाता है?
1: मैं आतिफ अब्बासी बात करूँ, बरको इस्लामाबाद से।
0: अच्छा जी, आतिफ अब्बासी। आतिफ अब्बासी, क्या बताओगे, अपनी अपना जुर्म का आज इर्तकाब करोगे या अपना ख्वाब बताओगे?
1: मैं दोनों बताना चाहता
0: हूँ। एक, कोई एक बताओगे।
1: मेरे ख्वाब में पहाड़ों को जलते देखा है, कोई है मेरे ख्वाब की ताबीर बताने वाला, मंतजिर किसका हूँ टूटी हुई दहलीज से मैं, कौन आएगा कहाँ, कौन है यहाँ आने वाला। तुम तो तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला।
0: हाय हाय हाय हाय, दोस्त होता नहीं है हर हाथ मिलाने वाला।
1: हर हाथ मिलाने
0: वाला, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने
1: वाला, मतलब जब भी किसी को, जो हमारे अजीज और कार भी जानने वाले हैं, जब किसी को जो दुनिया से चले गए हैं उनको देखता हूँ ख्वाब में, तो दूसरे दिन ये होता है कि कोई ना कोई गांव में मर जाता है।
0: अच्छा, वो मर, जिसको ख्वाब में देखता हूँ वो मर जाता है?
1: नहीं नहीं,
0: हाँ।
1: मरे हुए लोगों को ख्वाब में देखता हूँ, दूसरे दिन गांव में कोई जिंदा आदमी मर जाता है।
0: अरे भाई,
1: नहीं होता है।
0: तुम तो फिर बड़े पनौती हो
1: यार, इसकी क्या वजह है? मुझे, मैं खुद परेशान हूँ यार, ख्वाब देखता हूँ तो दूसरे सोचता रहता हूँ यार ये मैंने ख्वाब देखा था, इसका क्या होगा, क्या होगा।
0: अपने गुनाहों की अपने गुनाहों की माफी मांगो और तुम सोया मत करो, ख्वाब मत देखा करो
1: यार। रात को तो नींद आती नहीं, रेडियो सुनते रहते हैं, पढ़ के सोते हैं सुबह।
0: बस ना सोया करो, तुम हमेशा झांकते रहा करो।
1: मैं पागल हो जाऊंगा?
0: नहीं नहीं, बिल्कुल पागल नहीं होगे, ठीक हो जाओगे। चले, बस अभी कॉल ले रहा हूँ ना।
1: ले रहे हैं, हमारा सारा शो जाया जैसे मिला रहा
0: हूँ। चलो चलो, अभी आप प्रोग्राम सुनो, ठीक है? अब बाकी लोगों की कॉल सुनो।
1: नहीं तो दूसरा सवाल नहीं पूछेंगे?
0: नहीं, बस एक ही ना काफी है ना आतिफ, आज के लिए काफी है
1: यार। उस देना से दो पूछे थे आपने।
0: किससे दो पूछे थे?
1: उस देना से दो पूछे थे, वो जो आज पहले
0: बहना से दो पूछे थे। अब आप बहना तो नहीं हो ना?
1: वो बात ठीक है यार, लेकिन चलो ठीक है यार,
0: ओके आतिफ, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। आतिफ अब्बासी थे मेरे साथ जी, बारह कौर से। नेक्स्ट कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जी, के भी आपसे मुखातिब है। कौन साहब जी, साहिब है?
2: अस्सलाम वालेकुम जी, अनीला आपसे मुखातिब है।
0: जी अनीला, क्या हाल है आपके?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बाकी मैं ड्राइंग रूम में आके कॉल मिला रही, मैं अरक अरक हो गई।
0: अरक गरक मतलब कि आपको पसीने आ रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है शदीद।
2: ना मैंने फैन चलाया और मेरा बिल्कुल दिन जा रहा है, मुझे एसी फैन ऑन को।
0: आपका जी नहीं भरता, आप सारा दिन कॉल में लाती रहती हैं।
2: सारा दिन कहाँ मिलाती हूँ, सुबह तो मैं सोई नहीं।
0: अनीला, मैंने जब भी रेडियो ऑन किया ना,
2: नहीं
0: सुनो ना, मैंने जब भी रेडियो ऑन किया ना, मतलब इस सारे टेन्योर के अंदर जो पूरा पीछे पूरा एक महीना था ना, इस महीने के अंदर मैंने जब रेडियो नहीं किया, तो अक्सर मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो मैं अपनी गाड़ी में रेडियो ऑन कर लेता हूँ। मैं जब कभी एफ एम मनोमन लगाया है या कहीं और कोई चैनल लगाया है, अनीला आप ही वहाँ मुझे मिली है।
2: जाने दे,
0: कमाल बात है। नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं, नहीं ये बहुत अच्छी बात है, आप हर जगह छाई नहीं।
2: पिछले महीने तो कोई शोज ही नहीं हुए, शोज हुए ही नहीं।
0: अच्छा, मैं मतलब फिर आपकी आवाज, आपकी आवाज मुझे इतनी पसंद है कि मैं कहीं ना कहीं कोई भी आवाज सुन रहा होता हूँ उसको अनीला की आवाज के साथ मुशाबत दे रहा होता हूँ, कुछ ऐसा चल रहा है।
2: बस ठीक है, फिर आप भी खा दीजिए।
0: चलो अनीला बताओ फिर, क्या आपने जुर्म का इर्तकाब करोगी या ख्वाब बताओगी?
2: और आप सुनते तो बड़ी मजे की बात है ना, अच्छी बात है।
0: हाँ, मैं हमेशा जब भी मैंने रेडियो ऑन किया, अनीला आप ही की कॉल लगी होती है।
2: ओए होए, देख ले फिर, वो कहते हैं ना,
0: क्या हुस्ने इत्तेफाक है ना,
2: दोस्त पे सवार लहरी, उस वक्त आपसे रेडियो ऑन कर रखी जब मैं बोल रही होती हूँ।
0: हाँ, तो वो हुस्ने इत्तेफाक है ना ऐसा।
2: हुस्ने इत्तेफाक है।
0: चले
2: चले, अच्छी बात है कि आप हमारी कॉल सुनते हैं, बड़ी खुशी हुई। अभी तो मैं ये बताऊंगी कि मिशाल आई, बड़े दिनों बाद अच्छा लगा, और आप खाब पूछ रहे हैं या नहीं, मैं आपको अपना वाक्य बताऊं?
0: जी आप अपने जुर्म का इर्तकाब कीजिए आज।
2: हाँ कर लेती हूँ। एक दफा ना ऐसा था, काफी साल पहले की बात है, तो मेरे कजन ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, उनकी फैमिली आई हुई थी, तो ईद थी, तो ईद के लिए वो लोग आए हुए थे ना यहाँ पे, तो हमारे यहाँ ही ठहरे हुए थे। मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, तो वो आके कहने लगे कि उनको आदत, मतलब खुद अपने सारे काम करेंगे वो, तो क्या कहते हैं मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं ये शर्ट प्रेस कर लूँ, तो फिर तुम कर लेना ठीक है। मैंने कहा नहीं नहीं आप रख दे, मैं कर दूंगी, मैं अपने कर लूँ तो फिर मैं आपके कर दूंगी। अच्छा डन, मैंने कहा हाँ डन जाए आप। अच्छा वो खैर चले गए, और उनकी शर्ट वहां पड़ी हुई थी, वो सिल्क की शर्ट थी, जैसे कहते हैं ना बुशर्ट टाइप। अच्छा मैंने पकड़ा, जैसे मैं अपना कर रही थी सूट जो दूसरा वाला, वो थोड़ा हैवी था, तो खैर इसलिए भी तेज थी, मैंने ऐसे ही ऊपर इसलिए रखी, उस पर डिजाइन बन गया।
0: वाह वाह वाह, अच्छा।
2: मैंने देखा कोई नहीं है, मैंने फौरन वो स्टिच स्टैंड के नीचे की बारी होती है ना, मैंने उसके अंदर कपड़ों के अंदर गुत्तू मुत्तू करके रख दिया।
0: गुत्तू मुत्तू करके, अच्छा।
2: उसके बाद मैं वाइफ, उसके बाद वो आए, वो बेचारे इधर उधर कहीं ढूंढ डाल रहे होंगे, पूछते रहे इधर उधर नहीं मिली होगी, तो फिर मैं ना इत्तेफाक से किचन में थी, मैं चाय बना रही थी, आके कहते पर नीलो मेरी शर्ट किधर है। कौन सी शर्ट? वो जो मैं रख के आया था वहां पर स्टैंड पर। मैंने कहा नहीं भाई कोई भी नहीं थी। हाँ बल्कि आपको मैंने कहा था मैं कर दूंगी प्रेस, तो आप तो ले गए थे। नहीं नहीं कहते हैं मैं ले गया था। नहीं नहीं मैं वहां रख के गया था। मैंने कहा नहीं भाई आप ले गए थे, होती तो मैं प्रेस ना करती, ऐसे कैसे हो सकता है। कहते हैं अच्छा मैंने बड़ी थोड़ी सी शक्ल बनाई, गौर से देखा, अच्छा मेरी शर्ट है सुइया कहाँ चली गई। अच्छा वो ऐसे बातें करते हुए वापस चले गए, वो ढूंढ रहे होंगे। मैंने कहा अब तेरी खैर नहीं, मैं खैर चुप रही, मैंने बताया नहीं उनको है। कोई दो तीन दिन गुजरे होंगे, तो वो हमारी जो मेड थी ना वो कपड़े धोने के लिए निकालती रखती, टावल शावल वहां पड़े हुए कोई निकाल रही करी, उसने निकाल ली शर्ट और कहती है ओ है बाजी है कि टी शर्ट सड़ गई हुई है।
0: अच्छा
2: मेरी ताईजान को
0: देखा,
2: ताईजान मेरी ताईजान कहती हो है हसन है लोग दस तेरा करके कि कितने सड़ देती हो रही है,
0: सड़ देती किसी साथ बस। तो आज आपने इर्तकाब कर लिया, अभी अभी आपने एक काम करना है नीला,
2: मैंने आज तक कभी नहीं बताया, मैंने आज बताया।
0: नहीं नहीं आपने एक काम आज करना है, आपने इन सारे लोगों के सामने आज ये अहद करना है कि आपने उन भाई साहब को, उन भाई साहब को अभी आपने मैसेज करना है और उनको बताना है कि भाई साहब आई एम रियली सॉरी, उस दिन जो आपकी शर्ट जली थी वो मैंने जलाई थी, ये आपने करना है। और प्रॉमिस करें पूरे पाकिस्तान के सामने, नहीं नहीं बस एक ही बताएं, पूरे पाकिस्तान के सामने बताएं, आप ये प्रॉमिस करके जाएंगे, आपने मैसेज
2: करना,
0: प्रॉमिस करें कि आप करेंगे मैसेज।
2: मैसेज नहीं करूंगी, कॉल करूंगी कल।
0: चलो कॉल करनी है, मैसेज करनी है, लेकिन उनको बताना है कि आपकी शर्ट मैंने जलाई थी, ठीक है?
2: अब तो मैंने कुछ भी नहीं
0: कहा। और फिर उन्होंने फिर उन्होंने जो जवाब दिया ना वो मेरे अगले प्रोग्राम में आपने मुझे बताना है, ठीक है?
2: ठीक है।
0: अनिला अभी एक्चुअली मेरे पास टाइम बहुत कम है ना, कॉलर्स बहुत ज्यादा है, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ लेकिन किसी और का मौका देना चाहूँ। अल्लाह हाफिज, थैंक यू अनिला, बाय बाय। अनिला बड़ी मजेदार कॉलर है जी, और बड़ी मजे की बातें करती हैं, लेकिन आज जो है वो कॉलर्स बहुत ज्यादा हैं, फ्रीक्वेंसी कॉल्स की बहुत ज्यादा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका दूं, और आप जो लोग आ रहे हैं कॉल के ऊपर उनसे मेरी गुजारिश है कि कम बात करें। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप कैसे हैं? खैरियत से? जी जी अब्दुल अमीर पाजी, की हाल है तुहाडा? बिल्कुल ठीक है जी, तुसी ठीक हो? अच्छा आवाज कम आ रही है।
3: हाँ जी, हाँ।
0: चलो मैं अभी बोल रहा हूँ, फिर आपने मेरी आवाज सुननी है, ठीक है? थैंक यू। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
3: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
0: क्या हाल है अमीर गुल साहब, कैसे हैं
3: आप? ठीक है, खैरियत से?
0: बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, आप खैरियत से?
3: इतराफ करवा रहे हैं आप सबसे?
0: आप क्या इतराफ करेंगे आज?
3: नहीं मैं नहीं आने दूंगा अपने आप से बात।
0: ओके तो आप किसी और पे डालेंगे?
3: मेरा एक शेर है, गला साथ नहीं दे रहा, आप किस्मत में पेश करके जाना चाहूंगा कि उसे तो इतराफ जुर्म ही करना नहीं आया।
0: अरे वाह,
3: उसे तो
0: इतराफ जुर्म ही करना नहीं आया,
3: करना नहीं आया, मुझे भी टूट कर बिखरना नहीं आया। अब आप इसको एतराब कह लें या कुछ भी कह लें।
0: बस मैं समझ गया अमित गुल साहब, बहुत शुक्रिया,
3: खुश रहे,
0: थैंक यू जी, अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम। अमित गुल साहब मेरे साथ थे जी, थैंक यू सो मच अमित गुल साहब, वक्त और मौके की नजाकत को खूब समझते हैं, थैंक यू सो मच जी। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम, क्या हाल है?
0: बिल्कुल ठीक हूँ जी, अच्छा हूँ, आप बताइए।
4: भाई परवेज साहब हो गए थे सर?
0: बस मैं आ गया हूँ परवेज साहब, मैं आ गया हूँ,
4: बहुत अच्छा लगा,
0: बहुत शुक्रिया।
4: तो आज मेरा दिल कह रहा था आप आएंगे जरूर।
0: चले, आपके दिल की सुन ली,
4: ठीक है, घर में खरीद है, सब ठीक है,
0: सब अच्छा है, सब बहुत बेहतरीन चल रहा है।
4: तो माशाल्लाह हमेशा की तरह अच्छा शो होता है। तो सर जिंदगी में मैंने बहुत से ख्वाब देखे और सच्चे भी हुए। 98-98 की बात है, कराची था, तो जो 2-2.5 बजे के बाद रात को ख्वाब आते हैं वो बहुत सच्चे होते हैं। जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई तो मैंने ख्वाब में देखा बेटा पैदा हुआ मर गया, दूसरे दिन फिर मैंने देखा वही टाइम मैं परेशान हो गया मौली साहब के पास, उन्होंने बोला इसका होगा। फिर उस वक्त जो सर ये मोबाइल नहीं थे ना, PTHCL नंबर से होते थे, मैंने रब्ता किया तो घर वालों ने बोला एक रिश्तेदार मुबारक को तेरे घर में बेटी पैदा हुई। मैंने बोला और कोई फोत की जरा, तो 2 दिन पहले जो है ना मेरी बेगम की दादी भी फोत हो गई थी।
0: अच्छा,
4: ये 1998 की बात है सर।
0: अच्छा,
4: तो उसके बाद 2014 की मैंने ख्वाब देखा, एक मैं खड़ा था और मेरे वाले साथ ख्वाब और साथ हमने देखा एक कब्र है, बहुत खूबसूरत कब्र। फिर एक दिन बाद मैं भी इस्लामाबाद में था तो फोन आया तो मेरी हमशीरा जो है ना वो दुनिया से इंतकाल कर गई थी। बहुत से ख्वाब मैंने देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 5 मेरे बेटे पैदा हुए। मैंने ख्वाब में फल फ्रूट बहुत ज्यादा देखा, चांद देखा था, तो वो अल्लाह ताला ने जो है ना वो मुझे खुशियां भी दी। ख्वाब अच्छे होते हैं, सच्चे भी होते हैं सर। तो बात यह है कि अल्लाह की जात पे यकीन करना चाहिए, लेकिन इंसान को सिर्फ चाहिए कि अपने दिल को अंदर से दिल की सफाई बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, थैंक यू परवेज साहब।
4: क्या ले जाने हमने सर, एक इखलाक माशाल्लाह, आप आते हैं जो कहते हैं यकीन करें, हम अकेले ड्यूटी में बैठे होते लेकिन आपकी बातों से जो है ना हमारा दिल खुश हो जाता है। आज ऐसा वक्त है सर, किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं, हर बंदा अपने अपने मोबाइल पे टैग पे लगे हुए, बस अपने आप को मसरूफ रखा हुआ। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे सर, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, सब सुनने वालों को सलाम,
0: बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।

0: 101, where your spirit is set free.
1: 101 FM.
2: Station for Civilization.
3: 101 Hits FM.
4: आपके लिए FM 101 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

listening. FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.
1: ये जिंदगी भी अजीब है ना साहब, कि एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है।